0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
10: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान, महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
2: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: नजर उन पर तो अताएं होंगी ही, अच्छों का तो हाल अच्छा होगा, सरकार करम हम पर न किया तो हम जैसों का क्या हो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677. 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफुट, BD8 8AX, फोन ब्रेडफुट 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
12: मेनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज़ रोज़ा कुर्बानी हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford,
9: 01274201679।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio. The world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

तो एक और काम करोगी प्लीज़।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
6: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफर्ड, BD8ATY,
8: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं मूत रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मूत रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: Ek nazar ka sawal hai maula, gham se banda निढाल है मौला। एक नज़र का सवाल है मौला, हम से बंदा निढाल है मौला, वरना बेहाल हो गया होता, सांस तुझ से बहाल है मौला। रंजो गम से निकाल लेता है, रंजो गम से निकाल लेता है, तुझको कितना ख्याल है मौला। तू बहाने तलाश करता है, तू बहाने तलाश करता है, तेरी बख्शिश कमाल है मौला। सारे मंजर हसीन लगते हैं, तेरा अक्से जमाल है मौला। एक नजर का सवाल है मौला, गम से बंदा ने ढाल है मौला। वरना बेहाल हो गया होता सांस, तुझसे बहाल है मौला। रंजो गम से निकाल लेता है तुझको कितना ख्याल है मौला। तू बहाने तलाश करता है, तेरी बख्शिश कमाल है मौला। सारे मंजर हसीन लगते हैं, तेरा अक्से जमाल है मौला। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे। यही नशियात पहुंच रही हैं चंद इलाकों में डैप के जरिए, और पूरी दुनिया में यह आवाज़ पहुंच सकती है ऑनलाइन। जी हाँ, www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए। और साथ ही साथ आप सामीने कराम हमारा जो मोबाइल ऐप है स्मार्ट ऐप, उसके जरिए भी हमारी नशियात से लुत्फंदोज हो सकते हैं। हस्ब मामूल हस्ब वादा आपसे मुखातिब आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक प्रोग्राम इंतखाब के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं हम। और हमेशा की तरह उम्मीद और दुआ गो कि आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं बखैरियत हैं, शादो आबाद हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ हैं। जी हाँ सामईन कराम, एक और खूबसूरत सा दिन, एक और खूबसूरत सी सुबह। बहुत से लोग अपने काम काज का आगाज कर चुके, कुछ आगाज करने वाले हैं, कुछ जो हैं इंतज़ार में हैं कि कब वो वक्त आए उनके काम का और वो काम काज अपना जो है उसको शुरू करें। तो हर किसी का अपना टाइम टेबल है, हर किसी का अपना हिसाब किताब है। प्रोग्राम की तरतीब तफसील से आपको आगाह करते चलें। जी हाँ, हमारा आज का जो इंतखाब है हमेशा की तरह मुश्तमिल है कुछ खूबसूरत से गीत आपकी डेडिकेशंस के साथ, और कुछ आपके फरमाइशी गीत जो हमारे सरांखों पर वो हम आपके लिए पेश करते हैं अपने इस इंतखाब में। साथ ही साथ आपके ज़ौक की तस्कीन के लिए शेर व शायरी जो है वो हम अपने प्रोग्राम में हमेशा शामिल रखते हैं। और आज के दिन चंद मुतफर्रक जो शोराए कराम हैं उनका मंतखब कलाम जो है वो पढ़ के हम आप तक पहुंचाते हैं गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में। साथ ही साथ सामईन कराम चंद बातें होती हैं जो जहन में आ जाए, कुछ ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी बात कि जो हम चाहते हैं कि आपके गोश गुजार की जाए, आपसे बात की जाए, शेयर किया जाए आपके साथ उसको, और फिर आप भी उसके बारे में सोचते हैं, अपनी राय से नवाजते हैं हमें, तो वो चीज़ें भी शामिल होती हैं। इसके साथ साथ क्या शामिल होता है? जी हाँ, तारीख के औराक को हम उलटते पलटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अपने माजी को याद रखना, अपने माजी से जुड़े रहना, क्योंकि माजी हमें सबक सिखाता है, उससे हमें सबक मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने माजी को याद रखें, उसके साथ जुड़े रहें किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरह से। तो ये एक छोटा सा एक सेगमेंट है, एक जरिया है अपने माजी को याद करने का, याद रखने का, याद दिलाने का। तो वो होगा आज का तारीखी वाक्या, आपके गोश गुजार करेंगे हम जो हमने मंतखब कर रखा है। इसके अलावा सामईन कराम किस चीज़ का इंतखाब होता है? जी हाँ, हमारे जो बहुत बड़े बड़े उलमा, दानिश्वर, साइंटिस्ट, मुफक्किर हजरात गुजरे हैं दुनिया में, और सबसे बड़े अंबियाए कराम, तो कोई ना कोई किसी का कॉल, किसी की कोई बात, वो हम अपने प्रोग्राम में आज की छोटी सी खास बात के उनवान से प्रोग्राम में शामिल रखते हैं, आप तक पहुंचाते हैं उनके सुनहरे हरूफ, जिन्हें आप अकवाल जरी भी कहते हैं, जिन्हें हम सुनहरे हरूफ भी कहते हैं। तो वो ऐसी बातें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में रोशन उसको दीप की तरह जल जाती हैं और वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। तो वो भी आज के प्रोग्राम में सामईन कराम शामिल है। इसके अलावा जनाब दानिश्वर, मुफक्किर और ड्रामा निगार कौन, जनाब अशफाक अहमद साहब, उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, उनका जो जाविया है वो भी हम प्रोग्राम में आज के शामिल रखते हैं। आज के जो जाविये का उनवान है सामईन कराम वो है मन की आलूदगी। तो आप ज़रूर सुनिएगा, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आप तक पहुंचाएंगे कि मन की आलूदगी क्या चीज़ होती है, किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, किस तरह से इसको साफ किया जा सकता है। तो ये सब का सब होगा, मन की आलूदगी के हवाले से बात होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इसके अलावा क्या होता है? जी हाँ, इसके अलावा सामईन कराम और जो कुछ हमारे जहन में आया वो भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो ये सब चीज़ें, ये जो पूरे का पूरा इंतखाब है आज का, उम्मीद करते हैं कि आप सुनेंगे, हमारे साथ साथ रहेंगे, और पसंद करेंगे। अब किस तरह से आप अपनी आरा और तजावीज़ हम तक पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, एक तो ज़रिया सबसे आसान तरीन और बराह रास्त जो है बिलावास्ता आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01274306677 01274306677। बड़ा आसान सा नंबर स्टूडियोज़ का, इसके ज़रिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी आरा अपनी तजावीज़ हम तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या गीत किसके लिए सुनना चाहते हैं या कोई फरमाइश है आपकी, वो भी इस नंबर के ज़रिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ www.bradfordasianradio.co.uk इसके ज़रिए आप ईमेल कर सकते हैं, हमें अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। और एक और जो नंबर है व्हाट्सएप, बताना हमारा फ़र्ज है, बाकी इस्तेमाल करना तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है 07800-599-563 07800-599-563 ये हमारा एक और नंबर है व्हाट्सएप का, इसके ज़रिए भी आप अपना पैगाम अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सामीने कराम, ज़राए बहुत से हैं और सबसे आसान तरीन ज़रिया बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर मौजूद हैं हम 01274306677, इसके ज़रिए अपनी डेडिकेशंस, अपनी फरमाइशें, अपनी आरा, अपनी

दस्तावेज आप हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो लीजिए, जो आज का प्रोग्राम का पहला मंतखब गीत है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको सुनाते हैं, और साथ ही साथ मंतजर रहेंगे हम आपकी कॉल्स के। प्रोग्राम को सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा। तो आपसे कौन मुखातिब है शायद हमने आपको नहीं बताया। वैसे तो हमारे जो बाकायदा लिसनर्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई नए लोग भी सुन रहे हों। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो जो है वो अल्लाह करे कि रोज़ बरोज़ तरक्की की राहें जो हैं उनको मनाजिल को तय करता रहे, तरक्की की राह पर गामजन है बड़ी मुस्तादी के साथ और बड़ी मेहनत बड़ी तवज्जो के साथ। अब आपका काम है कि आप मजीद इस आवाज़ को आगे पहुँचाएँ, आगे फैलाएँ। किस तरह से कि आप ख़ुद अगर सुनते हैं तो आप अपने अजीज़ व अकारिब से भी गुजारिश कीजिए कि वो इसको जो है हमारा ये जो रेडियो है इसको आप सुने। आप इसको जब सुनेंगे तो यकीनन आप पसंद करेंगे। लीजिए पहला खूबसूरत सा गीत।

0: जी सामिने कराम, ज़िंदगी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी। ज़िंदगी इंसान खुद गुजारता है बहुत हद तक, बहुत हद तक। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा दिया, इख्तियार दिया, उसको अक़ल दिया, अक़ल दी, शऊर दिया उसको, कि सोच समझ के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए इंसान को। उसका अपना बहुत सा अमल दखल होता है इन सब चीज़ों पर, कि वो किस तरह की उसके सामने ज़िंदगी के हालात वाक़ियात आते हैं। बाकी आजमाइश होती है, तकालीफ होती हैं, आती रहती हैं इंसान के ऊपर। अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, सबको आजमाया जाता है। हर एक की आजमाइश ज़रा मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जी सबकी ज़िंदगी एक जैसी है या किसी को आजमाइश से गुजरना नहीं पड़ता। है ही इम्तिहान ये ज़िंदगी जो है, जो हमें मिली है, और ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये ज़िंदगी वक्ती ज़िंदगी है। जो अबदी जिंदगी है, जो अखरवी जिंदगी है हमारी, जो हमेशा हमेश रहने वाली है, क्योंकि ये जिंदगी इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाती है कि उसका दारो मदार, उसका पूरे का पूरा इन्हिसार जो है वो हमारी इस चंद रोजा जिंदगी के ऊपर होता है। इकबाल साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। और आपने बड़ी बातें की, अच्छी बातें की बहुत। आपने दो तीन टॉपिक्स पे बात की, उसमें से हम जो एक ले लेते हैं कि जी आपने कहा कि भाई भाई को कत्ल कर देता है रुपए पैसे के पीछे, और शुक्र किया आपने कि जी आपका कोई भाई नहीं है, 6 बहनें हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सबके भाई एक जैसे हों, ये भी ज़रूरी नहीं कि सबकी बहनें भी एक जैसी हों। इंसान जो है वो खता का पुतला है, भाई हो बहन हो। खुद हमें पहले, सबसे पहले सोचना चाहिए हम क्या हैं, हमारा रवैया क्या है, हमारा बर्ताव क्या है, ख्वा वो बहनें हैं, ख्वा भाई हैं हमारे। और जो आपने बात कही कि जी रुपए पैसे के पीछे बहुत कुछ हो जाता है, इसमें हकीकत है, बिल्कुल बात गलत नहीं है, हरगिज़ नहीं है। लेकिन फिर वही बात हम कहेंगे कि अल्लाह ताला ने शऊर दिया, अक़ल दी आपको, तो फिर इंसान को सोचना चाहिए। अगर इंसान सिर्फ रुपए पैसे के पीछे, जायदाद के पीछे भाइयों को भाई कत्ल कर रहे हैं, या बहनों का हिस्सा मार रहे हैं, या बेईमानी है, ज्यादती है, कुछ भी है, तो हिसाब किताब तो सबको देना है। दरअसल जो ऐसे गलत काम, इतने बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं, उनको अल्लाह ताला याद नहीं होते। वरना अगर खौफे खुदा हो, अगर खुदा याद हो उसकी मोहब्बत में, उसके आगे खड़े होने के खौफ से कि जी हमें जवाब दे। देखिए, एक हया होती है एक इंसान के अंदर ना, एक मरव्वत होती है। तो वो खुदा जब हमारे इतने गुनाहों की पर्दापोशी करता है, हमारी छोटी मोटी ना जाने कितनी खताएं वो ऐसे ही माफ़ कर देता है, माँ सिवा बड़े बड़े गुनाहों के, जिसमें हम लोगों के हक मार देते हैं, ज्यादती कर जाते हैं, किसी को बुरा भला कह दिया, चोरी चकारी की, गीबत की, किसी के जान माल इज्जत पे डाका डाला, तो ये सब चीज़ें जाहिर है नाकाबिल माफ़ी हैं। और कब तक नाकाबिल माफ़ी हैं, जब तक इंसान दूसरा इंसान माफ़ ना करे। वरना अल्लाह के जो हकूक़ हैं वो तो बहुत आसानी से, अल्लाह बहुत रहीम, बहुत करीम, गफ़ार है, वो तो बख्श देता है, माफ़ कर देता है। नमाजों में कोताही हो गई, कमी आ गई, रोज़े नहीं रख सके बावजूद, या आप हज का जो है हुक्म है, कोई वजह है, उजर आ गया तो आप हज नहीं कर सकते हैं, आप ज़कात का निसाब पूरा नहीं है, या उसमें कमी बेशी आ गई। लेकिन हम तो ये कहेंगे वैसे ज़कात जो है वो माली इबादत है, और वो बंदों के चूंकि उसमें हकूक आ जाते हैं, तो इसलिए उसमें भी बख्शिश का कम ही इम्कान है जब तक के। लेकिन बहरहाल अल्लाह का हुक्म है चूंकि, तो इसलिए उसको उसी हिसाब से देखना चाहिए कि अल्लाह के चले हुक्म अहकाम जो हैं उनमें कमी बेशी आ गई, अल्लाह माफ़ कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, कह दिया, कैटेगोरिकली बता दिया हमें कि बंदा अगर बंदे का कोई हक मारेगा या कुछ गलती करेगा, तो फिर वो तब तक माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक वो दूसरा बंदा माफ़ ना कर दे। तो इकबाल साहब, अगर इंसान इस बात को ही, एक बात को याद कर ले कि हकूकुल इबाद में माफ़ी तलाफी हो सकती है, लेकिन तब जब दूसरा बंदा माफ़ कर दे तो। और आप जानते हैं हम लोगों के ज़र्फ़ इतने नहीं होते, ज़ाहिर है खुदा जितना ज़र्फ़ किसका होगा, कौन इतना रहम दिल होता है। माफ़, छोटी मोटी माफ़ी हो भी जाती है, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान शायद भुला नहीं पाता। तो यह बहुत लंबी बहस है, हर किसी के हालात वाक़ियात मुख्तलिफ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, डिटेल्स में। लेकिन वही बात है कि बिल्कुल आपने जो बजा फरमाया कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। और आपने शेर भी कहा कि मत कीजिए गरूर इन हाथों की लकीरों पर, मत कीजिए गरूर इन हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बिल्कुल सही, ये किस्मत इंसान खुद बनाता है। याद रखिएगा, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, आपने कहाँ पैदा होना है, क्या शक्लो सूरत आपकी होगी, आपके आज़ाब पूरे हैं, फिर ये कि आपके वालिदैन कौन होंगे, ठीक है, ये कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, पहले से ही ये किस्मत कहलाती है। कहाँ इंसान ने दुनिया से रुख्सत होना है, किस तरीके से रुख्सत होना है, वजह क्या बनेंगी, बाकी सब चीज़ें इंसान अपने हाथ से किस्मत बनाता है। तो इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये खूबसूरत सा आने वाला गीत आपके लिए होगा। और समीरा साहिबा, आपकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से आपके मशकूर ममनून। समीरा साहिबा, आपने बताया कि अभी कुछ देर में आप बहुत मसरूफ़ होने वाली हैं, तो आपने कहा कि पहले कॉल कर लें, पहले बात कर लें। तो समीरा साहिबा, हम आपके मशकूर ममनून हैं। ये फिलहाल खूबसूरत सा गीत आपके नाम भी करते हैं, उम्मीद के साथ कि आप इसे पसंद करेंगी। इसके बाद एक और अच्छा सा गीत समीरा साहिबा यकीनन जो कि आप पसंद करेंगी, लता मंगेशकर की आवाज में पुराना गीत, वो भी हम लगाएंगे। फिलहाल इस गीत को सुनिएगा।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
13: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
12: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
13: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

बिछड़ना है तो खुशी से बिछड़ो, सवाल कैसे जवाब छोड़ो। बिछड़ना है तो खुशी से बिछड़ो, सवाल कैसे जवाब छोड़ो। किसे मिली हैं जहां में खुशियां, मिले हैं किसको अजाब छोड़ो। नए सफर पे जो चल पड़े हो, मुझे खबर है कि खुश बहुत हो। नए सफर पे जो चल पड़े हो, मुझे खबर है कि खुश बहुत हो। ये कौन उजड़ा है तुम्हारे पीछे, ये किसके टूटे हैं ख्वाब छोड़ो। मोहब्बतों के तमाम वादे निभाए किसने, भुलाए किसने। मोहब्बतों के तमाम वादे निभाए किसने, भुलाए किसने। न सोचो तुमको पशेमानी होगी जो मेरी मानो, हिसाब छोड़ो। बिछड़ना है तो खुशी से बिछड़ो, सवाल कैसे जवाब छोड़ो। किसे मिली हैं जहां में खुशियां, मिले हैं किसको अजाब छोड़ो। नए सफर पे जो चल पड़े हो, मुझे खबर है कि खुश बहुत हो। ये कौन उजड़ा तुम्हारे पीछे, ये किसके टूटे हैं ख्वाब छोड़ो। मोहब्बतों के तमाम वादे निभाए किसने, भुलाए किसने। न सोचो तुमको पशेमानी होगी जो मेरी मानो, हिसाब छोड़ो। मिर्ज़ा इब्राहिम बेग की खूबसूरत सी ये गज़ल थी। सामीन कराम, आपके हमने गोश गुजार की और आपने गीत सुना बहुत खूबसूरत सा, यकीनन आपने पसंद किया। और समीरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने तो बहुत पसंद किया, तहे दिल से आपके मशकूर ममनून। और ये आने वाला गीत समीरा साहिबा, ये तो यकीनन आप पसंद करेंगी। और फरमाइश किसकी है, जरका साहिबा आपकी। बहुत शुक्रिया जरका साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आप माशाल्लाह बड़े एक मुबारक सफर पे गई हुई थी और हमने आपसे गुजारिश की थी कि आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के लिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, इसकी पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा। आपने यकीनन दुआ की, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हम आपके मशकूर व ममनून हैं जरका साहिबा। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं, इबादतें, रियाजतें कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये खूबसूरत सा फरमाइशी गीत जरका साहिबा आपकी पसंद पर आपके लिए, और समीरा साहिबा आपके लिए भी मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत सी जादू भरी आवाज़।

0: जी मदिसा मीने कलाम बहुत खूबसूरत सा, आपने एक और सदाबहार गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत सी आवाज़ में। जरका साहिबा आपकी ये फरमाइश थी, हमने आपके गोश गुजार की, बहुत शुक्रिया कि आपने पसंद भी किया। और समीरा साहिबा आपको भी गीत बहुत पसंद आया, क्यों? क्योंकि जाहिर है मोहम्मद रफ़ी की जादू भरी खूबसूरत सी आवाज़ आपको हमेशा बहुत पसंद आती है। इकबाल साहब आप प्रोग्राम में दोबारा शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी नवाजिश। अब जो आने वाला गीत है आप ही की पसंद का गीत है, आपके लिए हम पेश करेंगे। हम तो यहां जाहिर है इसलिए बैठे हैं कि आपकी फरमाइशें जो हैं वो सर आंखों पे, आप सुनते हैं प्रोग्राम को, पसंद करते हैं, फिर शामिल होते हैं, तो बहुत हौसला अफजाई हो जाती है और प्रोग्राम को सच बात है हकीकतन चार चांद लग जाते हैं। और यही दुआ है जो अभी चौधरी रुखसार साहब आपने दी, तशरीफ लाए मैनचेस्टर से, हमेशा की तरह प्रोग्राम में शामिल हुए, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून हैं। और आपने वही, हम तो बार बार क्या कहें कि यू मेड माई डे, कि आपने जब इतनी खलूस इतनी मोहब्बत से आप दुआ फरमाते हैं, दुआ करते हैं खसूसन हमारे वालिद साहब की मगफरत के लिए, और क्या खूबसूरत आपने दुआ की आज, यकीन कीजिए कि बस एकदम से दिल भर आया। और बस दिल से दुआ जिस तरह से आप देते हैं उसी तरह हमारे दिल से आमीन सुम आमीन निकलती है, अल्लाह पाक की रहमत उससे पूरी पूरी हमें उम्मीद है बल्कि यकीन है कि अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। हमारे वालिद साहब के हक में भी, हमारे हक में, आपके हक में, आपकी फैमिली के हक में, और साथ ही साथ जैसा आपने दुआ दी ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की पूरी टीम को कि ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खूब तरक्की करे, खूब फले फूले, हम आपसे यही गुजारिश करते रहते हैं कि आप भी खुद सुनते हैं प्रोग्राम, आप पसंद करते हैं, तो आप अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने दोस्त अहबाब हैं उन सब तक ये पैगाम पहुंचाइए, उनको बताइए, खा वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, कहीं पे भी हैं जो उर्दू जानते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, कि वो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात को बाकायदा सुना करें, ताकि मजीद ये आवाज़ जो है वो और दूसरे लोगों तक भी पहुँच जाए। तो चौधरी रुखसार साहब इंतहाई हम आपके मशकूर व ममनून हैं, बहुत खूबसूरत आपने जो दुआएं दी, अल्लाह ताला उन तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपने फरमाइश की जिस गीत की, अभी थोड़ी देर में अगले हिस्से में प्रोग्राम की हम जरूर आपके लिए वो पेश करेंगे। फिलहाल खूबसूरत सा गीत आने जा आ रहा है, उससे पहले अमजद इस्लाम अमजद की खूबसूरत सी गजल कि आईनों में अक्स ना हो तो हैरत रहती है, आईनों में अक्स ना हो तो हैरत रहती है, जैसे खाली आंखों में भी वहशत रहती है। हरदम दुनिया के हंगामे घेरे रखते थे, हरदम दुनिया के हंगामे घेरे रखते थे, जब से तेरे ध्यान लगे हैं फुर्सत रहती है। करनी है तो खुल के करो इनकार वफा की बात, करनी है तो खुल के करो इनकार वफा की बात, बात अधूरी रह जाए तो हसरत रहती है। शहर सुखन में ऐसा कुछ कर इज्जत बन जाए, शहर सुखन में ऐसा कुछ कर इज्जत बन जाए, सब कुछ मिट्टी हो जाता है इज्जत रहती है। क्या खूबसूरत शेर है कि सब कुछ मिट्टी हो जाता है इज्जत रहती है। बनते बनते ढह जाती है दिल की हर तामीर, बनते बनते ढह जाती है दिल की हर तामीर, ख्वाहिश के बहरूप में शायद किस्मत रहती है। साए लरसते रहते हैं शहरों की गलियों में, साए लरसते रहते हैं शहरों की गलियों में, रहते थे इंसान जहां अब दहशत रहती है। मौसम कोई खुशबू लेकर आते जाते हैं, मौसम कोई खुशबू लेकर आते जाते हैं, क्या क्या हमको रात गए तक वहशत रहती है। ध्यान में मेला सा लगता है बीती यादों का, ध्यान में मेला सा लगता है बीती यादों का, अक्सर उसके गम से दिल की सोहबत रहती है। फूलों की तख्ती पे जैसे रंगों की तहरीर, फूलों की तख्ती पे जैसे रंगों की तहरीर, लौहे सुखन पर ऐसे अमजद शोहरत रहती है। आईनों में अक्स ना हो तो हैरत रहती है, जैसे खाली आंखों में भी वहशत रहती है। शहर सुखन में ऐसा कुछ कर इज्जत बन जाए, सब कुछ मिट्टी हो जाता है इज्जत रहती है। क्या खूबसूरत बात है, वाकईतन इंसान को इज्जत की तलाश करनी चाहिए, बाकी ये शोहरत और दौलत और मोहब्बत और ये सब चीजें ये आनी जानी है, सिर्फ और सिर्फ इज्जत रहती है। इज्जत कमाना बहुत मुश्किल होता है और कमा के फिर उसको कायम और दायम रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है। अल्लाह ताला सबकी इज्जतों को कायम रखे। दूसरों को इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। कहते हैं ना, जो कुछ इंसान दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों को देता है, वो पलट के लौट के उसके पास आता है। तो इज्जत दीजिए, इज्जत कमाइए। ये बहुत ही खूबसूरत सी ये बात है, इसको जहन में रखना चाहिए। इंसान को मोहब्बत देंगे, मोहब्बत मिलेगी। आजिजी आपके अंदर होगी, इनकिसारी होगी, जो अल्लाह ताला को पसंद है। वाहिद अल्लाह है कि जो इंसान को, जो कुछ इंसान उसके उलट जो करता है ना, तो अल्लाह ताला उसके उलट आपको देता है। कि आप आजिजी इनकिसारी से काम लेते हैं तो अल्लाह इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह ताला शोहरत भी देता है, नाम भी देता है। और अगर इंसान खुदा ना खास्ता तकब्बुर और गरूर का शिकार हो जाए तो फिर देखिए ना, इज्जत देने वाला भी वो है और जिल्लत देने वाला भी वो ऊपर बैठा है, उसको ये पसंद नहीं है। किबरियाई सिर्फ और सिर्फ उसको जेबा देती है, तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को जेबा देता है। तो ये इंसान अगर हमेशा याद रखे तो फिर थोड़ा बहुत बचत होने का बहुत इम्कान है कि इंसान बच जाएगा अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरना चाहिए। तो इकबाल साहब, ये खूबसूरत सा गीत आपने कहा कि जी किसकी लगाइए, कि अमिताभ बच्चन का की फिल्म का गीत लगाइए, लीजिए ये खूबसूरत सा गीत इकबाल साहब आपके लिए। और चौधरी रुखसार साहब, तहे दिल से आपके मशकूरों ममनून। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपके लिए गीत होगा। इस गीत के बाद कमर्शियल ब्रेक है। याद रखिए कि अशफाक अहमद साहब का जाविया प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपके गोश गुजार करेंगे। हमारे साथ साथ रहिएगा ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ 1413 AM पे ऑनलाइन। आपसे मुखातिब आपकी मेजबान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा।
1: का रंग जमा हो चकाचक हिरला पान चबा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनाओ रसबाला खुली जाए बंद अकल का ताला।

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला।

टिकी टिकी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पहन बनाओ रतबाला, खुल जाए बंद अकल का।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: مول سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، اور ساتھ ہی ساتھ چند علاقوں میں ڈیپ کے ذریعے بھی یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ آواز پہنچتی ہے پوری دنیا میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے۔ اور سامعین کرام، آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان اسماء اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں ہم، اور امید کرتے ہیں کہ اب تک کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ابھی ब्रेक से पहले चौधरी रुखसार साहब आपने प्रोग्राम में शिरकत की हमेशा की तरह और आपने इस गजल की फरमाइश की। यह गजल आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। इसके बाद जनाब अशफाक अहमद साहब का जो जाविया हम गोश गुजार करते हैं आपके, वो आपके लिए पेश किया जाएगा। जरूर उस हिस्से को सुनिएगा। उसका आज का उन्वान है मन की आलूदगी, कि इंसान के जो अंदर है, जो बातिन जिसे कहते हैं, इनर सेल्फ जिसे कहा जाता है, या रूह कह लीजिए उसको, कल्ब का नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए उसको, तो उसकी आलूदगी जो है, उसकी गंदगी जो है, वो क्या चीज़ है और किस तरह से उसको पाक और साफ किया जा सकता है। इंसान जाहिर है अपना जो बदन होता है, जो बातिन के अलावा जो जाहिर है उसकी तो खूबसूरती पे बहुत ध्यान देता है, रोज़ाना शावर लेता है, कपड़े चेंज करता है, दांत टूथब्रश किए जाते हैं, और ख़वातीन हैं तो वो मेकअप का बहुत ख्याल करती हैं अमूमन अक्सर जो हैं, कि साथ मैचिंग ये वो ज्वेलरी है, मैचिंग पर्स है, मैचिंग शूज़ हैं, हैंड बैग्स हैं, वट एवर, बंदे भी इस तरह से करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन जो हमारा अंदर है, जो हमारी इनर सेल्फ है, उसके हवाले से क्या लिखते हैं अशफाक अहमद साहब, वो ज़रूर बात आपके हम गोश गुजार करेंगे। इस वक्त जो है जनाब चौधरी रुखसार साहब आपकी फरमाइश आपके लिए पेश की जा रही है। और समीन कराम प्रोग्राम में आप भी शामिल होना चाहते हैं तो स्टूडियोज़ का नंबर 01274306677, इसके ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं। जनाब इकबाल साहब आप फिर प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। गीत आपने बहुत पसंद किया, आपने कहा यही गीत आप सुनना चाह रहे थे, तो हमने आपके लिए देखिए वो गीत लगा दिया। और आपने बताया कि आपकी भाभी सलाम दे रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु आपकी भाभी को। तो खुश रहिए इकबाल साहब, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, इसी तरह मोहब्बतें इज्जतें बांटते रहिए, और आपको भी अल्लाह करे ये इज्जतें और मोहब्बतें इसी तरह से मिलती रहें। लीजिए अब इस गजल को सुनते हैं। हदीका कयानी की खूबसूरत सी आवाज है और फरमाइश किसकी है? जी हाँ, जनाब चौधरी रुखसार साहब मैनचेस्टर से आपने फोन किया, आपकी। तो लीजिए इसे सुनिएगा।

0: जी मोदी सामी ने कराम, आप समात फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशात 1413 AM पे अपनी मेज़बान उस्मा अशफाक के हमरा। और सामी ने कराम, ये खूबसूरत सी गज़ल थी, फरमाइश किसकी थी, जनाब चौधरी रुखसार साहब आपकी, आपके लिए हमने ये पेश की, हदीका क्यानी की आवाज़ में थी। अब वक्त है जनाब अशफाक अहमद साहब का, मन की आलूदगी आज का हमारा टॉपिक है जो उनका मुंतखब किया है हमने, बाब या चैप्टर कह लीजिए। क्या लिखते हैं कि आज से चंद रोज पेशतर हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे और हमारा कहना था कि सारी दुनिया आलूदगी में मुस्तगरक है और ये आलूदगी ना सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि शजर व हजर और हैवानात को भी खाए चले जा रही है। इसके दूरस नुकसानात हैं और इसके खात्मे की तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इंसानी जिंदगी में दो मतवाजी लहरें एक साथ चलती हैं, एक तो हमारी अपनी जिंदगी और एक जिंदगी का नामालूम हिस्सा होता है, इसको गो हम जानते नहीं लेकिन महसूस जरूर करते हैं। यह हिस्सा हमारी जिंदगी की इस लहर के बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता है जो इस दुनिया से ताल्लुक रखती है। इस वक्त मुझे अपने इन बाबों का ख्याल आया जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि वो पॉल्यूशन के बारे में खासे मोहतात होते हैं और उन्हें इस बात की बड़ी फिक्र रहती है कि किसी भी सूरत में आलूदगी ना होने पाए, इस हवाले से वो खास एहतमाम करते हैं। इंटरनेशनल पोल्यूशन कंपेन से पहले की बात है जब डेरों पर एक ऐसा वक्त भी आता था कि डेरे का बाबा और उसके खलीफे आलूदगी के खिलाफ अपने आप को बाकायदा और बतौर खास एहतमाम में मसरूफ रखते और आने जाने वालों को इसकी बाबत आगाह करते थे जो इंसान की अंदरूनी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। इन बाबों का बाहर के पोल्यूशन से ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। इनका ख्याल है कि जब तक इंसान के अंदर की आलूदगी दूर नहीं होगी, बाहर की आलूदगी, आलूदगी क्या होती है, यानी गंदगी जो होती है, जो बीच में गंद फैल जाता है ना, उसकी बात हो रही है, तो उससे छुटकारा हासिल करना मुश्किल है। इनका ख्याल था, जो बड़ा जायज ख्याल था, कि हमारी बहुत सी बीमारियां हमारी अंदरूनी आलूदगी से पैदा होती हैं। वो कहते थे कि दिल के करीब एक बहुत बड़ा ताकचा है और इस ताकचे के अंदर बहुत गहरे गहरे दराज हैं, इनको निकाल कर औंधा करके साफ करने की ज़रूरत है क्योंकि इनमें अरसा दराज से जाले लगे हैं, तो कहीं चूहे की मेंगने पड़ी हैं और तरह तरह की खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं। आप लोग ये समझते हैं कि आपके दिल के वॉल्व बंद हो रहे हैं और जाहिर की जिंदगी में यही तसव्वुर उभरता है। दिल की नालियां बंद हो जाने की वजह यही होती है कि इसके इर्द गिर्द आलूदगी जमा हो जाती है और वो खतरनाक हद तक जमा हो जाती है और इंसानों को इसका पता ही नहीं चलता। इंसान खुद को चंगा भला और ठीक ठाक ख्याल करता है लेकिन दिल के करीब आलूदगी बढ़ती चली जाती है। ख़वातीनों हज़रात, दिल की आलूदगी जानने के लिए तो एक और तरह से झांकने की ज़रूरत होती है, वहाँ निगाह डालने के लिए एक और ज़ाविया नज़र से देखने की ज़रूरत होती है। इनका ख्याल है कि नफ़रत की वजह से हेपेटाइटिस बी फैलता है। इस बीमारी का सबब शदीद नफ़रत है। पहले ये बीमारी इतनी नहीं थी। एक वो ज़माना था जब पाकिस्तान नया नया बना और हम नौजवान थे, तब हम खुशी के साथ घूमते फिरते थे और जब हमें कोई बड़ी कार खूबसूरत लगती तो उसको हाथ लगाते, बड़े खुश होते। हमने माल रोड पर कितनी ही खूबसूरत कारों को हाथ लगाया, हमें तब ये मालूम भी ना था कि जेलस भी हुआ जाता है। अब बर्दाश्त नहीं होता। अब ये कैफियत है कि वालिद बेटे और बेटा वालिद से हसद करता है। रुस्तम और सोहराब की ताकत शोहरत और उसकी नामवरी से हासिल होता था और दोनों का आपस में टकराव भी होता था और सोहराब अपने सगे बेटे रुस्तम को कत्ल भी करता है। आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसकी शदीद नफरत खुद उसे ही खाए जा रही है, गो उसने अपने ऊपर अजीब तरह का खौल बदनीयती से नहीं चढ़ाया होता बल्कि मुआशरती तकाजों की बदौलत ही एक खौल उस पर चढ़ जाता है। बहुत बड़े आर्टिस्ट खुदा बख्शे जूबी होते थे। इनसे एक दफा एक बलोच जागीरदार ने तस्वीर बनवाई और सामीन कराम इसी को ले लीजिए कि हमारा जो आज का तारीखी वाकया है वो भी यही अब आपको सुनाने जो जा रहे हैं, ये वाकया ही है और ये सच्चा वाकया है। तो एक आर्टिस्ट होते थे, जूबी उनका नाम था, बड़े मशहूर आर्टिस्ट थे। तो एक दफा एक बलोच जागीरदार ने तस्वीर उनसे बनवाई। जब उन जागीरदार साहब की खिदमत में वो तस्वीर पेश की गई तो उन्होंने कहा कि इस तो मेरी शक्ल ही नहीं मिलती, ये तस्वीर मेरी लगती ही नहीं है। वहां उनके जो 15-20 हवारी बैठे थे उन्होंने भी कहा कि जी साईं, ये शक्ल तो आपसे मिलती ही नहीं है। अब वो आर्टिस्ट बेचारे बड़े शर्मिंदा हुए और उनकी तबीयत पर बड़ा बोझ पड़ा। वो तस्वीर वापस ले आए। कराची में उन दिनों उनके फनपारों की नुमाइश हुई तो उन्होंने क्या किया, अब जरा ये गौर से सुनने वाली बात है कि उन्होंने इस नुमाइश में उसी तस्वीर के नीचे जागीरदार का नाम मिटाकर चोर लिख दिया। अब उन साहब को भी इस बात की खबर पहुंची। वो अपना जो भी अपना उनका मोजर था या तलवार, उसको लेकर वहां से भागे और उन्होंने भी आकर वो तस्वीर देखी जिसके नीचे चोर लिखा हुआ था। फिर वो बड़े सख्त लहजे में आर्टिस्ट से गोया हुए और कहा कि तुम्हें ऐसी हरकत करने की जुर्रत कैसे हुई। आर्टिस्ट ने कहा कि सर, ये आपकी तस्वीर ही नहीं है और आपने खुद ही कहा था कि मेरी इस तस्वीर से शक्ल नहीं मिलती, और आपके हवारियों ने भी यही कहा था कि हजूर, ये आपकी तस्वीर नहीं है, तो आप कैसे मेरे ऊपर कोई क्लेम कर सकते हैं और ना कोई मुकदमा। जागीरदार साहब जो थे बड़े मतलब सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये पकड़ो पैसे, कितने की ये तस्वीर है, और तस्वीर मेरे हवाले करो, और 32,000 रुपये देकर वो अपनी तस्वीर बगल में लेकर चले गए। अब तीनों हजरात, इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह चोर है या साद है, यानी नेक है या बद है। वो चाहे जितनी भी कोशिश करे, उस पर अपनी असलियत जाहिर नहीं होती, क्योंकि उसके पास मराकबे का कोई जरिया नहीं होता। अपने आप को फेस करने के बाद ही खूबियां खामियां आया होंगी और इंसान अपनी खराबियां दूर सके कर सकेगा। जब आपको पता चलता है कि मेरे चेहरे पर एक फिंसी है, तो वो आपको डिस्टर्ब करती है, लेकिन जब वजूद के अंदर, रूह के अंदर कोई बीमारी आ जाती है, तो फिर इसका इल्म नहीं होता। हमारे बाबे एक बात पर बड़ा जोर दिया करते थे। उनका फरमान था कि आपने दिल के दराज के मुख्तलिफ कोनों में जो गुलदस्ते फेंके हुए हैं, जो अकीदत के हैं, इन्हें निकाल कर बाहर फेंको, क्योंकि इनकी बदबू बड़ी शदीद होती है, वो संभाली नहीं जाती। वो कहते थे कि इन बोसीदा गुलदस्तों को निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी है। अब हम इनसे झगड़ा करते कि बाबा जी, अकीदत के गुलदस्तों को कैसे और क्यों कर दिल से बाहर निकाल फेंका जाए। उन्होंने कहा कि देखो, जिन गुलदस्तों को तरोताज़ा रहना चाहिए था, वो आपके वजूद के अंदर पड़े हुए तरोताज़ा नहीं रहे और पड़े पड़े बदबूदार हो गए हैं इस कदर कि आपको इन गुलदस्तों या बदबू से मोहब्बत और अकीदत हो गई है और आप इन्हें बाहर नहीं फेंकते। और जो जो आपकी बैरूनी ज़िंदगी में माउथ वॉशेज बनते जाएंगे और गरारे करने की जितनी भी दवाएं बनती जाएंगी, ये अंदर की बदबू को ख़त्म नहीं कर सकती। अब कई मल्टीनेशनल कंपनियां मुंह में खुशबू पैदा करने के लिए अद्वियात बनाकर देती हैं और करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रही हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के बावजूद अंदर से बदबू के ऐसे भपके और भभाके निकलते हैं कि ये चीज़ें इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकती। हालांकि खुदा ने इंसानी जिस्म बेहतरीन साख्त पर बनाया है, ये नहा धोकर साफ होकर अच्छा हो जाता है, लेकिन अब अंदर की बदबू साफ नहीं होती। हम पूछते हैं बाबा जी से कि जनाब, ये किस किस्म की अकीदत का गुलदस्ता है। फरमाने लगे कि मिसाल के तौर पर तुमने एक गुलदस्ता बड़ा सजाया हुआ था, अब वो गल सड़ गया। आपने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि सब आपस में भाई भाई हैं, बल्कि इसे सिर्फ दिखाने के लिए गुलदस्ते के तौर पर रखा था और ऐसे ही रख कर गलने सड़ने दिया है। आपने गुलदस्ता लोगों के साथ अच्छी बात करो भी रखा था, अब वो भी पड़ा पड़ा बदबूदार हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अदल इंसाफ के गुलदस्ते को भी खराब कर दिया। अकीदत का जो गुलदस्ता सबसे ज्यादा खराब हुआ है, वो बेइंसाफी है। इंसान ने अदल से मुंह मोड़ लिया, हालांकि इंसान के सारे निज़ाम की अदल पर बुनियाद है। हमें हर जगह अदल का हुक्म है। आप किसी की शक्ल से नफरत करते हुए किसी को इंसाफ की फराहमी रोकने के मजाज नहीं है। इस्लाम कहता है कि तुम किसी से मोहब्बत ना करो, इस पर कोई मुआखजा नहीं, लेकिन बेइंसाफी और अदल ना करने पर मुआखजा लाजिम है, यानी हिसाब किताब होगा। इन गुलदस्तों को तरोताज़ा करने के लिए बाकायदा एक अमल करना पड़ता था और बाबा जी के पास बहुत देर तक रहना पड़ता था, कुछ रातें बसर करना होती थीं, कुछ ऐसे महलूल पीने पड़ते थे। आपको बताऊं कि गाव जुबान और एक इलायची उस वक्त खाने को दी जाती जब नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू होता और इसका एक मुफर्रा किस्म का कहवा पीने को मिलता। हमें डेरे पर एक खुशबूदार दवा अस्तखदूस की चाय पिलाई जाती, उसको दमाग के जाले साफ करने वाली दवा कहा जाता है। सियानों का कहना है कि म्यूजिक की धुन बनाना सबसे मुश्किल काम है। इसमें सबसे मुश्किल बात यह है कि यह हमारे यहाँ लिखा ही नहीं जाता। मैं एक छोटे दर्जे का राइटर हूँ, जो भी लिखता हूँ पढ़ सकता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, लेकिन धुन बनाने वाला मेरी तरह पिछली धुन को कागज उठाकर नहीं देख सकता। उसके जहन में यह बात रहनी जरूरी है कि वो कहाँ से चला था और उसे पहली धुन को दूसरी, तीसरी या आखिरी के साथ किस तरह से जोड़ना है। वैसे तो अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा और खूबसूरत जहन दिया है, उसमें आलूदगी नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल चाहे कि आप अंदर की सफाई करें, इस अमल से गुजरें, तो आपको एक बहुत बड़ी मुश्किल पेश आएगी। आपको लगेगा कि सफाई हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होगा, बल्कि सफाई के अमल में जरा सी कोताही से इसमें और आलूदगी शामिल हो जाएगी। इंसानी जिंदगी में अजीब अजीब तरह की कमजोरियां आती हैं और आदमी इनमें फंसा रहता है, और जब वो अपनी अंदरूनी तहारत चाहता है, पाकीजगी का आरजूमंद भी होता है, तो भी उससे कोई ना कोई ऐसी कोताही सरजद हो जाती है कि वो बजाय सफाई के मजीद जंगालूद हो जाता है। मैं ये समझता हूँ और ये मेरा पैगाम ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए है कि जब तक अंदर की सफाई नहीं होगी, तब तक बाहर की आलूदगी दूर नहीं हो सकती। आप रोज़ शिकायत करते हैं, आए रोज़ लेटर टू द एडिटर लिखते हैं कि जी देखें, हमारे घर के आगे गंदगी पड़ी है या हमारे मोहल्ले में गंदगी है, और दिल से ये आपकी आरजू नहीं होती कि सफाई हो। आपने अपने अंदर अभी तक ये तय ही नहीं किया कि आपने अब सफाई करनी है। ये बात उस वक्त तय होगी जब आपको पाकीजगी और सफाई से मोहब्बत होगी और आप नकली खुशबुओं के सहारे जिंदगी बसर करने की बजाय अंदर की आलूदगी ख़त्म कर देने का ना सोचें। आपने बहुत सुना होगा ये पाकीज़ा लोगों के बदन की खुशबू ऐसी मुफर्रा और मसहूर कुन होती है कि उनके करीब बैठने से बहुत सारी आलूदगियाँ दूर हो जाती हैं, चाहे उन्होंने कोई खुशबू या इतर लगाया हो या ना लगाया हो। आप बाबों का तरीका कार इख्तियार करें या ना करें, यह आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उन्होंने रूह की सफाई के लिए जो तरकीबें बनाई होती हैं, उनको आप अपना सकते हैं, और उनको अपनाए जाने के बाद लोगों को बड़ी आसानियां अता की जा सकती हैं। और हमारे यहाँ से हर हफ्ते एक ही दुआ होती है कि अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। मौजूद सामीने कराम, ये था जनाब आज का हमारा जाविया, जनाब अशफाक अहमद साहब का लिखा हुआ। उन्होंने ये खूबसूरत सा जाविया हमारे लिए पेश किया, अंदर की मन की आलूदगी की बात की, अंदर की खराबियों की बात की। और ये मन की आलूदगी क्या होती है सामीने कराम, ये जो इखलाकी बुराइयाँ जिन्हें हम उर्फ आम में कहते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं कि फलां बंदा जो है वो एथिक्स को भूला हुआ है, उसको तौर तरीका नहीं आता जिंदगी गुजारने का, या अदब आदाब जिसे कहिए आप, तो वो ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। ये इखलाकी बुराइयाँ जो हैं ये मन की आलूदगी होती है। हसद करना एक दूसरे से, या तकब्बुर करना, गरूर करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, किसी की टोह में रहना, चुगली करना, गीबत करना, ये सब क्या है? ये सब इखलाकी बुराइयाँ हैं। ये मन की आलूदगी में इजाफा करती हैं, हमारे अंदर को, हमारे बातिन को बीमार करती हैं, ख़राब करती हैं। और जिस तरह से अगर आप ज़ाहरी तौर पर अपने जिस्म की सफाई नहीं करते, जिस तरह से आप अगर हफ्ता गुजर जाए, दो हफ्ते गुजर जाएं, अगर आप साफ सुथरे अपने आप को नहीं करते अपने बदन को, तो बदबू आने लगती है। और बिल्कुल इसी तरह से जब इंसान अपने मन की आलूदगी को साफ नहीं करता ना, ये इन इखलाकी बुराइयों में मुब्तला रहता है, तो फिर आपके अंदर से भी, इंसान के अंदर से जो है वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बदबू आने लगती है। अभी जो इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी और उससे मुतालिक ही ये बात यहाँ पे आ गई, जब हमने ये रुस्तम और सोहराब की बात पढ़ी कि वो दोनों बाप बेटा थे और हसद में आके बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया कि वो उससे जोरावर क्यों है ज्यादा। इससे बड़ी क्या बात होगी कि एक बाप अपने बेटे को महज इस वजह से कत्ल कर दे कि उसका नाम उससे ऊपर ना चला जाए, वो इतना बहादुर क्यों है, उसको लोग पसंद क्यों करते हैं। तो सामीने कराम, और जैसे अशफाक अहमद साहब ने क्या खूबसूरत बात कही कि पहले जब किसी की कोई अच्छी गाड़ी देखा करते थे तो खुश होते थे लोग, लोग उसको खुशी से हाथ लगाते थे और दुआ देते होंगे खुश होके, जाहिर है। लेकिन अब क्या है, अब किसी अपने से अच्छी कोई चीज़ किसी के पास देख ली, खा वो गाड़ी है, खा वो मोबाइल है, खा वो ड्रेस है, कुछ भी है, घर है, तो रश्क नहीं करते, हसद करते हैं जेलस हो जाते हैं कि उसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। और याद रखिएगा, ये जो हसद करना है ना सामीन कराम, ये क्यों इतना बड़ा गुनाह है, इसलिए क्यों कहा जाता है कि हसद नेकियों को इस तरह से कहा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, शायद बहुत कम लोगों ने इस पर गौर किया हो, जाना हो, कि अब जब हसद हम करते हैं ना किसी से, इसका मतलब है हम अल्लाह ताला की तकसीम से खुश नहीं हैं, ना खुश हैं। भाई अल्लाह ने चाहा तो दूसरे शख्स को वो चीज़ अता की, चाहे वो खूबसूरती है, खूबसीरती है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है, अच्छा ओहदा है, औलाद है, जो कुछ भी है अल्लाह का अता करता है। तो जब हसद इंसान करता है ना किसी से, इसका मतलब है कि दूसरे से वो जल रहा है कि फलां के पास ये चीज़ क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं, अल्लाह ने उसे क्यों नहीं वो चीज़ दी। इसका मतलब है कि आप अल्लाह की तकसीम से नाराज़ हैं, उसकी दी हुई चीज़ों से आप ना खुश हैं। भाई अल्लाह जो चाहे सो करे, अल्लाह के ऊपर तो किसी की कोई मर्जी नहीं चलती। वल्लाहु अला कुल्ले शाइन कदीर, वो बेहतर वो अलीम है, वो खबीर है, वो हकीम है। तो उसकी हिकमत, उसकी जो है उसके इल्म तक हम तो नहीं पहुंच सकते। हमें क्या इल्म के इस ये जो खूबी फलां को दी गई है उसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत है, क्या वजह है। और यकीन कीजिए ये हकीकत है, ये हमारे जो सुनने वाले और जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं, जिनमें खसूसन जनाब तारिक भट्ट साहब हैं, जनाब इकबाल साहब हैं, जनाब चौधरी रुखसार साहब आप हैं, हमेशा कहा करते हैं कि जी चौधरी जो इकबाल साहब हैं जी, आप नंबर वन प्रेजेंटर, नंबर वन प्रेजेंटर। और हमेशा हम उनसे यही बात कहते हैं कि नंबर वन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और कोई नहीं। या जिस तरह से चौधरी रुखसार आप तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं, जनाब तारिक भट्ट साहब जिस तरह से आप कहते हैं कि जी आप जैसा कोई प्रेजेंटर नहीं, ये वो, हम वो बातें, पहली बात है कि ऑन एयर ज़्यादा इसलिए भी नहीं करते हैं, इंसान का नफ्स सामने कराम बड़ा जल्दी भटका देता है, बहुत जल्दी। बहरहाल इस पर बात करते हैं, फिलहाल हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, सुनते रहिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो अपनी मेजबान उस्मा अशफाक के हमरा।
1: कम्युनिटी रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: एंड द विनर इज,
3: एंड द विनर इज,
4: एंड द विनर इज,
2: योर बिजनेस बीइंग हर्ड ऑन द रेडियो।
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD9 5VR, 01274-491-442,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए,
8: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
10: 01274-201679, UK।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 Aruli Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
8: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
0: मौजूद सामीन का नाम ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात आप समाप्त फरमा रहे हैं 1413 AM पे। ऑनलाइन ये नशियात आप सुन रहे हैं bradfordasianradio.co.uk के जरिए, और हमारा जो स्मार्टफोन ऐप है उसके जरिए भी जो नशियात है हमारी ये आप तक पहुंच रही हैं। आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा। बात हो रही थी सामीने कराम मन की आलूदगी की, कि जो ये खराबियां हमारे अंदर पैदा होती हैं ना, हसद है, गीबत है, चुगली है, एक दूसरे की टो में रहना, नाइंसाफी हो जाती है, किसी की इज्जत जान माल पे हमला करना है, ये सब गुनाह हैं। और हमेशा याद रखिए, अमूमन माजरत के साथ कि उलमा बात तो करते हैं कि जी किसी ने हज कर लिया, हज अकबर अगर हो गया तो सब गुनाह माफ हो जाएंगे, इंसान ऐसे है जैसे वो माँ के पेट से अभी पैदा हुआ, या फिर जिसने रमज़ान के रोज़े रखे पूरे महीने के खलूस नियत के साथ, उसमें कोई कोताही नहीं हुई, गलती नहीं हुई, तो तब भी ऐसा ही है कि उसकी गुज़िश्ता तमाम जो ज़िंदगी के गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लेकिन लेकिन ये बात बताना शायद भूल जाते हैं, ये सरफे नजर कर जाते हैं कि कौन से गुनाह माफ होंगे भाई। ये वो गुनाह माफ होंगे जो हकूक अल्लाह हैं, जो अल्लाह के हकूक है ना इंसान के ऊपर, बंदे के ऊपर। नमाज है जैसे, जैसे रोजे का हुक्म है, जैसे हज का हुक्म है अगर आप में तौफीक है तो, जैसे जक़ात है, वो वाले हकूक जो अल्लाह के हकूक हैं वो माफ हो जाएंगे। जो बंदों के हकूक हैं, जिन्हें उर्फ आम में हकूकुल इबाद कहा जाता है, वो सामीने कराम कभी भी माफ अल्लाह ताला नहीं करेगा जब तक के बंदा बंदे से माफी ना मांग ले, जब तक कि वो तौबा ना कर ले और वो बंदा उसको माफ ना कर दे। वरना तो रोजे क़यामत का दिन फिर किस लिए रखा अल्लाह ताला ने? सोचिए थोड़ा सा, इंसान को अपनी अकल से, अपने शऊर से काम लेना चाहिए कि अगर ऐसा होना है, अल्लाह ने अगर कह दिया, बेशक अल्लाह माफ कर देगा अपने हकूक। हमेशा इस जहन में रखिए, याद रखिए, अगर किसी को गाली दी किसी ने, अगर किसी ने किसी का हक खाया, अगर किसी ने किसी की इज्जत पे हमला किया, तो वो शख्स दूसरा जब तक माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला के हाथ से भी माफी नहीं होगी। वो तमाम जो गुनाह है ना, वो तमाम जितनी भी खताएं या गलतियां हैं, उन सब का हिसाब किताब इंसान को देना पड़ेगा। अगर दुनिया में नहीं दे सका, अगर दुनिया में माफी तलाफी नहीं हुई, تو پھر روز قیامت اس کا حساب کتاب ہوگا. اس حوالے سے ایک حدیث بھی آپ کے گوش گزار کرتے چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک محفل میں ظاہر بیٹھے تھے سو ہوا کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے عرض کی بڑے ادب کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے مفلس ہم سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے وہ مفلس ہے, وہ نادار, اسے کہیے, اسے غریب کہیے, مفلس کہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میری امت میں مفلس شخص وہ ہوگا کہ جو روز قیامت اپنی بہت سی نیکیاں لے کے جائے گا, یعنی کبھی نماز قضا نہیں کی, روزے ہمیشہ سے رکھے بڑی پابندی کے ساتھ, باقاعدگی کے ساتھ, بڑے حساب کتاب سے, صحیح طریقے سے اس نے حج بھی کیے, عمرے بہت سے کیے, یعنی بہت سی عبادات جو ہے نا اپنے وہ پلے میں لے کے جائے گا کہ جی مفہوم اس حدیث کا یہ ہے. تو وہاں پہ جب وہ پہنچے گا روز قیامت تو کیا ہوگا, اس دن حساب کتاب جب ہوگا تو بہت سے ایسے لوگ نکل آئیں گے, کبھی کسی کو گالی دی ہوگی, کسی بہن کو اس کا حق نہیں دیا, اپنی بیوی کے ساتھ اس کے حقوق پورے نہیں کیے, اپنے والدین سے اس نے کوئی گستاخی کی, یا اور کوئی کلیگ کے ساتھ کسی کا حق مارا, کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, ناانصافی کر دی. تو پھر اس روز کیا ہوگا سامعین کرام؟ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اس روز پھر ان تمام اشخاص جو دوسرے ہیں انسان کے پاس لینے اور دینے کے لیے ماں سوا اپنی نیکیوں اور اپنے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہوگا. نہ تو اس دن کوئی شہرت کام آئے گی, نہ دولت کام آئے گی, نہ عزت کام آئے گی, نہ کوئی عہدہ کام آئے گا, نہ سفارش کام آئے گی. بس کیا ہوگا کہ جو نیکیاں ہوں گی اس شخص کی وہ دے دی جائیں گی, بانٹ دی جائیں گی, یعنی تقسیم کر دی جائیں گی ان تمام لوگوں میں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی, جن کا حق کھایا گیا, جن کے ساتھ اس بندے نے, اس شخص نے اس کی غیبت کی, چگلی کھائی, اس کی ٹو میں رہا, ان کے ساتھ برا سلوک کیا. تو اس روز وہ سب اپنی نیکیاں دے گا اور پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور جب اس کے بعد بھی اس کے پاس دینے کو جب کچھ نہیں بچے گا, ذرا سوچئے, تو پھر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے جن کے حقوق اس نے غصب کیے ہوں گے ان کے جو گناہ ہیں وہ اس بندے کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے, کیونکہ اس روز نیکی اور گناہ کے علاوہ کچھ لینے دینے کو نہیں ہوگا انسان کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ مفلس وہ ہوگا جو اس دن پھر خالی ہاتھ رہ جائے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ ہم بڑی عبادتوں کے زوم میں اور بڑی اچھائیوں اور نیکیاں کرنے کے زوم میں ہم اس دن روز قیامت اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں اور دوسروں کے گناہ ہمارے پلڑے میں آ جائیں اور پھر اس دن کچھ کام نہیں آنا. تو اس دن سے بچے انسان, اور ہمیں ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے. یہ بہت تعریفیں, نفس پھول جاتا ہے بڑی جلدی, جو نفس ہے نا انسان کو گمراہ کرتا ہے, جی ہم ہی ہم ہیں, بہت کچھ ہے جناب, ہم یہ عالم, یہ فاضل, ہم بڑے باشعور, ہم بڑے سمجھدار, ہم بڑے عقل مند. اور ابھی جیسا کہ اقبال صاحب پھر آپ نے فون کیا, آپ نے پھر کہا کہ جی وہی بات آپ نے دہرائی نمبر ون کی, تو ایسی بات نہیں ہے. ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے سب سے پہلی چیز, یہ اس کی کرم نوازی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو اگر کوئی صلاحیت, کوئی قابلیت بخشتا ہے تو وہ بخشنے والا اس کی ذات ہے. یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ایسے اچھے پڑھے لکھے باشعور والدین ملے, پہلی بات ان کی تربیت, اور اس کے بعد پھر اساتذہ ایسے ملے, انہوں نے ہمیں اتنی اچھی سکولنگ دی ہمارے والدین نے کہ ہمیں اساتذہ بہترین ملے, یہ بھی ہماری خوش قسمتی, اللہ کی طرف سے اس کا فضل, اس کا کرم. ہمیشہ یاد رکھیے کہ فضل جو ہوتا ہے وہ صرف رزق نہیں ہوتا, اور رزق جو ہے وہ صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں, یہ سب چیزیں اللہ کے فضل اور کرم میں آتی ہیں. سامعین کرام, اگر آپ کو اچھے والدین مل گئے جنہوں نے تربیت اچھی کی, اگر آپ کو اساتذہ بہت اچھے مل گئے جو بڑے لائق فائق تھے, جنہوں نے آپ کو تراش خراش کر کے کچھ تھوڑا بہت بنا دیا ہمیں, یا پھر آپ کو ماحول ایسا ملا, آپ کو مواقع ایسے میسر آ گئے کہ آپ میں پالش کرنے کے, اپنے آپ کو مزید نکھارنے کے آپ کو موقع مل گیا. ورنہ تو بہت بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں دنیا میں, کہتے ہیں نا, اور جو چودھری رخسار صاحب آپ نے بات کی تھی کہ جی بڑے علم کی بات جب ہوئی تو جب ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس بھی بڑا علم, ہارنے کی آپ کو موقع مل گیا. वरना तो बहुत बड़े बड़े पड़े हैं दुनिया में, कहते हैं। और चौधरी रुख साहब आपने थी कि जी इनकी बात जब हुई तो हमने कहा कि माशाल्लाह

लिखा, बड़ा अकलमंद, बड़ा समझदार, बहुत इल्म वाला, हरगिज नहीं। सब वो है, सब का सब वो एक अकेला, वो जो ऊपर है ना अल्लाह की ज़ात, सब कुछ वो है। इंसान कुछ नहीं, इंसान की क्या औकात। आज इस वक्त अभी इंसान की सांस रुक जाए, अभी अल्लाह ताला इस कुव्वत गोयाई को सलब कर ले, छीन ले, तो क्या कर सकता है इंसान, कुछ भी नहीं। अभी हाफजा इंसान का जवाब दे जाए, ये जो बीमारियां आती हैं आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो ये बात है कि अंदर की मन की सफाई की बहुत ज़रूरत है और हर वक्त सोचना चाहिए, खसूसन रात को जब हम सोते हैं ना, बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तैयारी वैसे तो करते हैं जनाब, नाइट सूट पहना, आपने क्रीम व्रीम लगाई, आपने कुछ और किया, ब्रश किया बालों को, सब कुछ, जो कुछ भी, आप टॉयलेट से फारिग होके आए, इसके साथ 5 मिनट इंसान को ज़रूर देने चाहिए कि वह सोचे कि आज का दिन कैसा गया, आज के दिन हमने क्या अच्छे काम किए, क्या हमने गलत काम हमसे हो गए, बुरे काम हमने किए, क्या गलती कोताही हो गई, और बंदों के अगर हकूक गसब किए हैं, अगर ज्यादती हो गई है, तो सामीने कराम बहुत बहुत ये अहम नुकता है कि जिंदा होते हुए भी ही उस शख्स से माफी मांग ली जाए, आना को पीछे छोड़िए, वरना कल के रोज जब इंसान के पास वक्त नहीं रहेगा और इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ नेकियां रह जाएंगी देने के लिए, तो फिर इंसान खसारे ही में रहेगा। इन बातों को, इन चीज़ों को सोचिए, इन पे गौर करना चाहिए। रोजी रोटी के चक्कर हैं, बिल्कुल सही है, इंसान बहुत मसरूफ़ है, बच्चे हैं, बीवी है, शोहर है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अजीज़ो अकारिब हैं, सब कुछ साथ लेके चलना पड़ता है, यही इंसान का असल इम्तिहान है। तो इस बारे में सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपने मन में ज़रूर झांकते रहिए, अपने कल्ब की सफाई की तरफ भी ज़रूर ध्यान देते रहना चाहिए। थोड़ा सा सिर्फ वक्त चाहिए उसके लिए, उसके लिए आपको कोई मेकअप नहीं करना, उसके लिए आपको कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं है, उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना बातिन की सफाई के लिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, और फिर आपका अमल उसके मुताबिक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लीजिए एक बहुत खूबसूरत सा गीत आप तमाम सुनने वालों के लिए हम पेश कर रहे हैं, पेशकश है ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की, सुनते रहिए आप।

सविना का नाम एक और खूबसूरत सा आपने गीत सुना, पेशकश थी ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की। 1413 AM पे आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk और साथ ही साथ मोबाइल ऐप के जरिए भी आप हमारी नशियात से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब तक का इंतखाब आपको पसंद आया होगा, खबर गीतों की शक्ल में था या वो शायरी की शक्ल में था।

जी सामिने कराम, और क्या बात हो रही थी? जी हाँ, बात ये हो रही थी कि आपको हमने गीत सुनवाए, आपकी फरमाइश पूरी की, कुछ शेर व शायरी आपके गोश गुजार कर रहे हैं गाहे बा गाहे अशफाक अहमद साहब का जाविया हमने आपके गोश गुजार किया। उसमें एक तारीखी वाकया जो था, सच्चा वाकया जो था, वो भी आप तक हमने पहुँचाया। और जो आज की छोटी सी खास बात है वो यही है कि जो आपको हदीस मुबारक भी हमने आज सुनाई, उसका जो मफहूम था कि अपने इंसान अंदर की सफाई को ज़रूर जो है ना उसका ख्याल रखे और मुफलिस होने से बचे, ये ना हो कि रोज़े क़यामत हमारे हाथ में कुछ ना हो, इससे बचना चाहिए इंसान को। अमजद साम अमजद क्या लिखते हैं आशूब आगही के हवाले से कि मेरे इन जागते ख्वाबों का मुकद्दर क्या है, मेरे इन जागते ख्वाबों का मुकद्दर क्या है, मैं कि हर शय की बका जानता हूँ, उड़ते लम्हों का पता जानता हूँ, सर्द और जर्द सितारों की तगापू क्या है, रंग क्या चीज है, खुशबू क्या है, सुबह का सहर है क्या, रात का जादू क्या है, रेत और नक्शे कदम मौज का रम, आंख और गोशा लब जुल्फ का खम, शाम और सुबह का गम, सबकी किस्मत है फना जानता हूं, फिर भी ये ख्वाब मेरे साथ लगे रहते हैं, जागते ख्वाब के जिनकी कोई ताबीर नहीं, कोई तफसीर नहीं, सूरत जख्म हरे रहते हैं, मेरे हाथों से परे रहते हैं, आगही जहल से बदतर ठहरी, जागते ख्वाब की ताबीर मुकद्दर ठहरी, जिंदगी मेरे लिए गुम्बदे बेदर ठहरी, मैं क्या आवाज़े सबा जानता हूँ, उड़ते लम्हों का पता जानता हूँ और हर शय की बका जानता हूँ।

0: जी सविन कराम, खूबसूरत सा पुराना सा गीत आपने सुना, यकीनन पसंद किया होगा। कोशिश तो यही होती है कि मिले जुले गीत आपके लिए पेश किए जाएं, कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ मिले जुले होते हैं, ये नई पुराने के दरमियान में कह लीजिए, ना बहुत पुराने और ना बिल्कुल नए। बहुत ज़्यादा जो नए गीत हैं वो तो खैर हमें पसंद नहीं है बजाते खुद, और फिर फरमाइश भी नहीं आती, इसलिए हम उनको प्रोग्राम में शामिल भी नहीं करते। लीजिए एक और, अब बहुत पुराना सा आपने खूबसूरत सा गीत सुना, लीजिए अब एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनिएगा। इसकी शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, फिल्म भी बहुत खूबसूरत थी, फिल्म का नाम है इजाज़त और गुलजार साहब का लिखा हुआ ये गीत है, लेकिन क्या कहिए कि इस वक्त आप सुन नहीं पाएंगे क्योंकि वक्त हो रहा है कमर्शियल ब्रेक का, तो कमर्शियल ब्रेक अपने वक्त पे लेनी बहुत ज़रूरी होती है, हर काम अपने वक्त पे जैसे अच्छा लगता है ना। तो हम ब्रेक की जानिब चलेंगे चंद लम्हों में, उसके बाद जो है ब्रेक के बाद ये खूबसूरत सा गीत ये आप तमाम सुनने वालों के लिए हम पेश करेंगे जो इस वक्त समात फरमा रहे हैं ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे, ऑनलाइन bradfordasianradio.co.uk के जरिए आप सुन रहे हैं और हमारे स्मार्टफोन ऐप के जरिए भी। तो आपसे मुखातिब है आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा शामिल हो सकते हैं आप हमारे साथ 01274306677 के जरिए। चलते हैं हम छोटी सी ब्रेक की जानिब, सुनते रहिएगा।
1: One Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK.
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444. Or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

इकबाल साहब, यकीनन आपने इस गीत को सुना होगा। किशोर कुमार की खूबसूरत सी आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गीत पेशकश ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की, जो आप समाप्त फरमा रहे हैं 1413 AM पे। ऑनलाइन भी ये नशियात पहुंच रही हैं और हमारे स्मार्ट फोन ऐप के जरिए आप हमारी नशियात से लुत्फानंदोज होते हैं। आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक। अब क्या करते हैं जी, हमारे जहन में ये आ रहा था कि इंसान दूसरों से मोहब्बत कब कर सकता है, कैसे कर सकता है। समीना करम, याद रखिएगा, जब इंसान अगर अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, इंसान को अगर अपना आप पसंद नहीं, तो वो दूसरों से कैसे मोहब्बत कर सकता है। सबसे पहले इंसान को अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। किस तरह से? कि आपको अपने बारे में ख्याल करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या सलाहियत काबिलियत अल्लाह ताला ने आपको वदियत कर रखी है। आप उनको पॉलिश कीजिए, उनको निखारिए, उनको इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश कीजिए, जिससे ना सिर्फ आपका भला हो, आपकी शख्सियत निखरे, संवरे, खूबसूरत बने, बल्कि साथ ही साथ जितने आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको फ़ायदा हासिल हो। क्योंकि अगर आप दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा रहे, तो फिर किसी भी सलाहियत का, किसी भी काबिलियत का कोई खास फायदा नहीं है, फिर आप उसको जाया कर रहे हैं एक लिहाज से। और यही चीज नाशुकरी के जुमरे में आती है कि जो चीज, जो अल्लाह ताला ने आपको खूबी है, सलाहियत है, काबिलियत है दे रखी है, अगर उससे किसी का फायदा नहीं होता, तो फिर वो काहे की खूबसूरती, काहे की सलाहियत या काहे की वो काबिलियत। तो ये इंसान को सोचना चाहिए कि जिसमें दूसरों का भला हो, दूसरों का फायदा हो, किसी भी सूरत में वही चीज़ उसका फिर सही मानों में इंसान उसका हक अदा करता है, उसका शुक्र अदा करता है। महज अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, महज सिर्फ अल्लाह का शुक्र कह देना, उससे आपका फ़र्ज अदा नहीं होता, जब तक कि आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उसको अमली जामा नहीं पहनाते और उससे दूसरे फ़ायदा हासिल नहीं करते। ये छोटी सी खास बात है आज की, कि जो हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में सोचें, अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें, और उसके बाद फिर दूसरों पर तवज्जो दें। वैसे भी किसी की टो में रहना जो है ना, अच्छी बात नहीं होती, कि फला कौन है, कैसा है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी जा रही है। भी अपने आप पे तवज्जो की करनी चाहिए इंसान को, वही वक्त अपने आप पे लगाना चाहिए, अपनी तराश खराश में इंसान को लगाना चाहिए, वरना तो सब इंसान एक जैसे हैं। मतलब सबके दो हाथ दो पांव हैं, जबान दी अल्लाह ने इंसान को बोलने के लिए, अमूमन यही होता है ना। अगर आप मुकम्मल सेहतमंद पैदा हुए हैं, तमाम आज़ा आपके सही सलामत हैं, तो फिर उनका सही मानों में इस्तेमाल भी कीजिए। लीजिए एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम आप तमाम सुनने वालों को सुनवाते हैं, आपके नाम करते हैं। प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो 01274 3066 77 के ज़रिए आप प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं।

0: ये स्वामी ने कराम, सोचने की बात है। इंसान बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ पढ़ता है, जानता है, लेकिन उसके बावजूद ठोकर जरूर खाता है। अब ये देख लीजिए, हैरत की बात है। खता का पुतला है इंसान। इंसान बहुत, हम फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, उनमें पता होता है कि हर दफा ऐसा जरूरी नहीं होता कि इंसान जो जाहिरी आंख से चीज को देखे, जिस तरह से वो चीजें नजर आ रही हैं, वो चीजें उस तरह से नहीं होती हैं। लेकिन उसके बावजूद हम खता खाते हैं, हम गलत फहमी का अमूमन शिकार होते हैं। ये इंसानी फितरत है। जब तक खुद को ठोकर ना लगे, तब तक इंसान जो है ना, सबक नहीं सीखता। खा जितने मर्जी वाज कर लीजिए, जितनी मर्जी तकरीर हो जाए, जितना मर्जी उसको बात को बार बार दोहराया जाए, लेकिन वही बात है कि हर शख्स अपने हिसाब से ही और अपने वक्त पे ही सीखता है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, इन गीतों में, इन गानों में क्या क्या सबक जो है वो पोशीदा होते हैं। इंसान अगर इन पे गौर करे, इनके अल्फाज पे लुत्फ उठाना बिल्कुल एक अलहदा बात है। बिल्कुल सही, आपकी मौसीकी आपको अच्छी लगती है, धुन गाने की अच्छी लगती है, तो बिल्कुल सही है। एंजॉय करना चाहिए, लुत्फ उठाना चाहिए। गीत इसीलिए ज्यादातर होते हैं, लेकिन फिर ये है कि उनमें जो छुपा पैगाम होता है, बाज़ोकात इतना छुपा तो नहीं होता, उनके जो मतलब जाहिरी भी अगर गौर करें और देखें, तो उनसे जो मतलब बनता है, उनसे सबक लेना चाहिए इंसान को। लेकिन हम क्या करें, हम बस वक्त ही किसी चीज़ का हम पे असर होता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि जी क्या किसी ने कहा था, क्या किसी ने बोला था, क्या किसी के साथ अगर ऐसा हुआ था तो हमारे साथ ऐसा ना हो। उसके लिए हम थोड़े बहुत प्रिकॉशंस जिन्हें कहते हैं ना, थोड़े बहुत हम सोच समझ लें। अमूमन लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत कम होते हैं, और वही अकलमंद इंसान होता है जो अपने इन चीज़ों से सबक, दूसरों के तजुर्बात से, मुशाहदे से सबक सीखता है, और फिर अपनी ज़िंदगी में वो भरपूर कोशिश करते हैं कि ऐसी गलती उनसे ना होने पाए। वरना अमूमन वही बात है कि हम बार बार गिरते हैं, बार बार ठोकरें खाते हैं, हमें फिर वही चीज़ें, वही हालात दरपेश आते हैं, और उसके बावजूद हम उसी तरह का रवैया रखते हैं, रिएक्ट करते हैं उसी तरह से, जब तक कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो जाए। तब इंसान को थोड़ी सी अक्ल आती है, इंसान थोड़ा समझने की फिर कोशिश करता है, क्योंकि फिर और कोई चारा भी नहीं होता। उसके बाद कोई और ऑप्शन उसके पास ऐसी नहीं रह जाती कि फिर वो किस तरह से, जब तक अब अगर हालात अब भी ना बदले या इंसान खुद को अब भी नहीं बदलता, तो फिर बहुत पछतावा ही रह जाता है। और वो कहते हैं ना, बाजों का एक कहावत है, अब पछतावे क्या हो, जब चिड़ियां चुग गई खेत, तो फिर वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए उससे पहले पहले ही इंसान सबक हासिल कर ले, इंसान संभल जाए, बेहतर बेहतरी की तरफ चला जाए। चलिए, अब एक ब्रेक का वक्त करीब है, हम चलेंगे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जानिब। सुनते रहिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात।
1: It's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस 106
7: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: Nimmo,
14: मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती।
13: मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
14: मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती।
13: मगर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।
14: मैं कहती हूँ चली जाओ, मत आओ मेरे पीछे।
13: भाई वाह, तुम मेरी होने वाली बेबी, तुम्हारे पास ना हो तो कहाँ जाऊँ।
14: चुप रहो, मुझे तुम परेशान करोगे तो मैं दूर कहीं चले जाऊंगी।
13: इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, छोटी सी ये दुनिया है निम्मो, इसके रास्ते घूम फिर कर एक दूसरे से मिल ही जाते हैं।

जी समीनी का नाम, खूबसूरत सा आपने कमर्शियल ब्रेक के बाद गीत सुना और उम्मीद है कि इकबाल साहब बहुत खुश हो गए होंगे। वैसे भी आपने 3 मरतबा कॉल की, शिरकत की, तो आपके लिए हमने गीत भी उसी हिसाब से ज़्यादा लगाए किशोर कुमार की आवाज़ में। उम्मीद करते हैं कि आपने सभी गीतों को पसंद किया होगा। जुनेद साहब आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आने वाला गीत जो है आपके नाम करते हैं, आपने कहा कोई भी अच्छा सा गीत आपके नाम कर दिया जाए, तो बहुत शुक्रिया। आने वाला गीत आपके नाम होगा। उससे पहले अहमद नदीम कासमी की लिखी हुई खूबसूरत सी एक हमारे पास नज्म कह लीजिए, कलाम कह लीजिए, वो है, वो आपके गोश गुजार करते हैं। गजल ही है वैसे तो। न वो सिन है फुर्सत इश्क का, न वो सिन है फुर्सत इश्क का, न वो दिन है कशफ जमाल के, मगर अब भी दिल को जवान रखें वही शोबदे खदो खाल के। ये जो गर्द बाद हयात है कोई इसकी जद से बचा नहीं, ये जो गर्द बाद हयात है कोई इसकी जद से बचा नहीं, मगर आज तक तेरी याद को मैं रखूं संभाल संभाल के। मैं अमीन व कद्र शनास था, मुझे सांस सांस का पास था, मैं अमीन व कद्र शनास था, मुझे सांस सांस का पास था। ये जबीन पे हैं जो लिखे हुए ये हिसाब हैं महोसाल के। वो कभी शफक का क्या लिखते हैं आगे, कि वो कभी शफक का फसूं कहें, कभी गुल कहें, कभी खून कहें, कि है मेरी सुबह अरूज में अभी रंग शम में जवाल के। शब तार से न डरा मुझे, शब तार से न डरा मुझे, ए खुदा जमाल दिखा मुझे, कि तेरे सबूत हैं पेशतर तेरी शान चाहो जलाल के। कोई कोहकन हो के कैस हो, कोई कोहकन हो कि कैस हो, कोई मीर हो कि नदीम हो, सभी नाम एक ही शख्स के, सभी फूल एक ही डाल के। न वो सिन है फुर्सत इश्क का, न वो दिन है कशफे जमाल के, मगर अब भी दिल को जवान रखें वही शोभ दे खदो खाल के। ये जो गर्द बाद हयात है कोई इसकी जद से बचा नहीं, मगर आज तक तेरी याद को मैं रखूं संभाल संभाल के। मैं अमीन व कद्र शनास था, मुझे सांस सांस का पास था, ये जबीं पे हैं जो लिखे हुए ये हिसाब हैं महोसाल के। वो कभी शफक का फसूं कहें, कभी गुल कहें, कभी खून कहें, कि है मेरी सुबह अरूज में अभी रंग शम में जवाल के। शब तार से न डरा मुझे या खुदा जमाल दिखा मुझे, कि तेरे सबूत हैं पेशतर तेरी शान चाहो जलाल के। कोई कोहकन हो के कैस हो, कोई मीर हो के नदीम हो, सभी नाम एक ही शख्स के, सभी फूल एक ही डाल के। तो लीजिए अब ये जो है ना खूबसूरत सा गीत, ये सुनिएगा

जमीने कलाम प्यार उन्हें तो पता नहीं किस मोड़ पे लेके आया, लेकिन हमें हमारा प्रोग्राम इस मोड़ पे लेके आ रहा है कि बस आपसे रुख्सती लेने का वक्त करीब है, इजाज़त लेने का वक्त करीब करीब आ रहा है। अभी तो खैर वक्त है थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल इतना दूर भी नहीं है वक्त, और किस तरह से ये वक्त गुजरा पता ही नहीं चला। आप समीने कराम जो है इतनी मोहब्बत इतने खलूस से आप तशरीफ़ लाते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं, यकीन कीजिए कि प्रोग्राम को वही बात है कि चार चांद लग जाते हैं। चौधरी रुखसार साहब आप दोबारा तशरीफ़ लाए और आपने कहा जी आज इकबाल साहब के तो बहुत गीत उनके लिए लगा दिए गए। जी अच्छी बात है, देखिए ना वो जितनी दफा शामिल होंगे फिर वही हिसाब आ जाता है ना कि हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है इंसान को। और ये तो आप भी जानते हैं कि जो कोई अगर कॉल नहीं करते तो हम उनका नाम प्रोग्राम में शामिल भी नहीं करते, और जो कॉल करते हैं तो जाहिर है वो हमारा एक फ़र्ज बन जाता है कि जी उनका बताया जाए कि फलां साहब ने कॉल की। क्योंकि आप लोग अपना कीमती वक्त जो है जब आप हमें देते हैं, जब आप इतनी तारीफ़ और तौसीफ़ करते हैं माशाल्लाह से, जब आप प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, तो हम आपका

नाम क्यों नहीं लेंगे, बार बार हम आपका नाम लेंगे। और बहुत शुक्रिया, माजरत ना किया कीजिए, बल्कि खुशी होती है कि आप अभी तक हमारे साथ साथ हैं। वही बात है ना कि लॉयल्टी, वफादारी क्या होती है कि आप पूरा साथ निभाते हैं, ये नहीं कि बीच सफर में छोड़ के इंसान किसी को और वो चला जाए, वो अच्छी बात नहीं होती है। बात खैर प्रोग्राम की और है, ऐसा मत समझिएगा कि हम आपसे ये कहते हैं कि जी आप पूरा टाइम ही साथ दें, ऐसी बात नहीं है, इंसान को और भी कामकाज होते हैं। बस रेडियो का असल फ़ायदा, अच्छी बात यही है कि इंसान कामकाज भी साथ साथ करता रहता है और साथ साथ जो है वो प्रोग्राम भी सुनता रहता है, लुत्फ़अंदोज़ होता रहता है। तो ये बातें होती हैं, ये रेडियो की जिसे कहिए ना कि बहुत बड़ी खूबी है। एक और बहुत खूबसूरत सा गीत हम आपके सबके नाम करेंगे, चौधरी रुखसार साहब आपके नाम करेंगे खसूसी तौर पर। लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा। थोड़ा सा मौका मिला तो हमने कहा कि चलिए, बहुत ज़्यादा आज हम इतने मसरूफ नहीं रहे, तो हमने कहा कि चलिए ढूंढ ढूंढ के ज़रा अपनी पसंद के भी गीत लगा देते हैं। अच्छा लगता है बाज़ औक़ात, हमें भी बजाते खुद किशोर कुमार बहुत ही पसंद हैं, उनकी आवाज़, उनके जो गीत फिल्माए गए। और इकबाल साहब जो हैं वो तो वैसे आपने जैसे कि बताया, आप भी जानते हैं अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो कहते हैं ना फ़ैन नंबर वन, तो वो हैं। तो अच्छी बात है, हर इंसान की पसंद होती है, नापसंद होती है, उनका एहतराम करना चाहिए। लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा, इससे पहले कि वो जो बहुत करीब वक्त आ जाए, एक दो गीत हम चाहते हैं आप सबके लिए पेश किए जाएं। लीजिए सुनिएगा।

शिशिशिये किते करता ऐसा काए को होता, शिशिशिये किते करता ऐसा काए को होता, देख ले जिस दिन माइकल को रात को सेट नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है, हे अब जज़ाएबा ला ला ला ला ला हे अब

बड़े शहर में है चोर बड़े, जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े, अपने व्यवस्थाद यहाँ पड़े हुए हैं और बड़े। माइकल तो बस लोगों की खाली जेब कतरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

का पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए, लोग दीवाना है गोयू इस पैसे पे मरता है, फिर मैं कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। अब hey!

0: दंगा करता है। ए हाँ भाई सर, ए ला ला ला ला ला है, हाँ भाई सर, अरे ला ला ला ला ला ला है, हाँ भाई सर, ए ला ला ला ला ला ला है, हाँ भाई सर।
1: जी हाँ सामीने कराम, ये एक ऐसा गीत है जो बहुत बहुत बचपन में कभी सुना करते थे तो जहन में वो गीत याद रह गया कि ये भी एक गीत था, और इसीलिए वो अच्छा लगता है। देखते हैं, कहते हैं ना वो बचपन की यादें जो हैं वो इंसान की ताज़ा हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और अब जैसा कि हमने कहा था कि वक्त बहुत करीब है कि अब आपसे इजाज़त भी लेनी है, तो लीजिए अब ये खूबसूरत सा गीत, और इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़ कल दोबारा मुलाकात रहेगी इसी यानी 10 बजे से लेके 1:15 बजे तक। तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह हामी व नासिर, अल्लाह हाफिज़।

0: On Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team.
1: You're listening to 01274
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर,
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
11: मेनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

डेफोडेशन रेडियो की आवाज है 1430 मिलियन वेव पर यॉर्कशायर की सचिन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bedfordnationradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस बज्म गजल उसने छेड़ी की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुश आमदीद कहेंगे।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

और दोस्तों ये पसंद थी हमारे उस खूबसूरत लिसनर की जो मैनचेस्टर के सनती शहर में हमारे साथ मौजूद हैं और जिनके भेजे हुए फूलों ने स्टूडियो को महका रखा है। चौधरी रुखसार अहमद साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। परदेसी मजीद साहब, आपने जो गीत सुनना चाहा है हमने नोट कर लिया है, हम उसे ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। अभी तो हम खुश आमदीद कह रहे हैं, शकील साहब तशरीफ ला चुके हैं बंडले से हमारी बज़ में, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और उनका मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारा अगला गीत और ये तोहफा हमारे उन नादीदा लिसनर्स के नाम होगा जो दुनिया के चार कोनों में हमें ऑनलाइन www.breathforationradio.co.uk पर सुन रहे हैं। दोस्तों, जिस मोहब्बत से ये अहबाब तशरीफ लाते हैं तो ये इनका हक है कि इनके हुजूर भी एक खूबसूरत सा तोहफा पेश किया जाए। मैंने अपनी पसंद का एक बहुत खूबसूरत गीत मुंतखब किया है जो मैं इनकी नज़र करूंगा और इसके बाद हम आपको खारियां गुजरात पाकिस्तान लिए चलेंगे जहां परदेसी मजीद साहब मौजूद हैं और सुनना चाहते हैं खूबसूरत गीत। मजीद भाई, ज़रा ये बताइएगा कि अब तबीयत आपकी कैसी है, इसलिए कि हम सब बहुत दुआ कर रहे हैं आपके लिए और मेरे जितने लिसनर्स हैं उन्होंने बाय नेम आपके लिए दुआएं करवाई हैं, तो असर तो हुआ होगा दुआओं का, ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने नादीदा लिसनर्स के तोहफे की जानिब जो हमें दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन सुन रहे हैं और तशरीफ लाकर मेरी हिम्मत अफजाई करते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी पसंद आपकी मोहब्बतों के नाम।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अब वक्त हुआ है कि हम आपको लिए चले खाड़िया गुजरात पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम जनाबे परदेसी मजीद साहब। आप सबकी दुआओं से अब उनकी तबीयत बहुत बेहतर है, और मजीद साहब फिक्र नहीं कीजिए, तवक्कल तो अल्लाह, सर में दर्द कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो जब आपका बुखार उतरा है, खांसी ख़त्म हुई है, कमज़ोरी ख़त्म हुई है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अब आप पहले से बहुत बेहतर हैं, और अल्लाह पर ही भरोसा रखिए, खामखा की सोचें जो हैं आदमी को बीमार कर देती हैं, अल्लाह के सहारे ही सब जीते हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम भी उसके सहारे पर ही जी रहे हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और सेहत कामला और सेहत हाजरा नसीब फरमाए, हमारी ढेरों दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। और अब रहा ये आपने जो चीज़ का लिखा है, इंशाल्लाह मुझ तक पहुंच गई है, और हम बात करके आपको बताएंगे कि क्या किया जाए। बहरहाल अभी तो आप गीत सुनिए अपनी पसंद का, और ये दवा समझ के सुनिए, इंशाल्लाह सर का दर्द खत्म हो जाएगा। जीते रहो।

0: वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत इंतखाब था परदेसी मजीद साहब। अभी आप सुन रहे थे दुख्तरे सहरा, मायनाज, हमारी फोक सिंगर बिल्कुल मुनफरिद आवाज की मालिक रेशमा को। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफिरत फरमाए। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। आप सुन रहे हैं ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के या वेल्स के किसी भी हिस्से में सुन रहे हैं और हमारी बज़्म में तशरीफ लाना चाहें, हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। कमर्शियल के वक्फे के बाद आपका पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार लेकर हाजिर रहूंगा। आज का गीत मुंतखिब किया है जनाबे शकील साहब ने बनले से। आप सबके लिए भी दावत आम है, आप ये रोजाना सुनते हैं कोई ऐसा गीत जो अभी हमारी निगाह से ना गुजरा हो और आप उसे अपने नाम से मुंतखिब करना चाहें, हम तमाम सुनने और देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। एक शायर एक गीत एक फनकार नहीं दो फनकार जो हम पेश करेंगे। आज का गीत मुंतखिब किया है बल्ले से जनाबे शकील साहब ने, जिसके लिए हम बेइंतहा उनके शुक्रगुजार हैं।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM, DAB+, मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3 49, अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
4: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

और दोस्तों आप सुन रहे हैं बेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की सचिन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे ऑनलाइन सुना जा रहा है।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक शायर एक गीत दो फनकार। आज की फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, 1996 की फिल्म। आज के शायर हैं समीर और मौसीकी से सवारा है। इस गीत को आप सब जानते हैं, दो बहुत ही प्यारे से मौसीकारों की हसीन जोड़ी है नदीम शरवन्ने, और अब तशरीफ ला रही हैं इसी गीत को आप तक पहुंचाने के लिए। बे इंतहा खूबसूरत आवाज के मालिक, बेशुमार अवार्ड्स से वाबस्ता इनकी शख्सियत अलका याग्निक। अभी मोहम्मद अयूब चौहान साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक गीत की निशानदेही की। अभी मैंने लिस्ट में नोट किया है और चेक किया है और वो गीत हो चुका है, तो दूसरा गीत अयूब चौहान साहब देखिए, सोचिए और हमें बताइए, हम जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं आज के दूसरे फनकार अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज की जानिब।

और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे एक शायर, एक गीत, दो फनकार। आज का जो गीत था उसे मुंतखिब किया था हमारे मोहतरम शकील साहब ने बनले से। फिल्म का नाम था राजा हिंदुस्तानी, 1996 की फिल्म थी। लिरिक्स तहरीर किए थे समीर ने, मौसीकी से इसे संवारा था नदीम शरवन ने, और आवाजों का जादू जगा रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक। अब हम चलते हैं उस हसीन तोहफे की जानिब जिसे हमारे मोहतरम लिसनर शकील साहब ने बनले में सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है, और कहते हैं कि आज मलकए तरन्नुम नूरजहां की सालगिरह है। अच्छा, आपने याद दिलाया तो हमें याद आया, मलकए तरन्नुम शहरंगेज दिल नशी मनमोहनी आवाज की मालिक ये शख्सियत हमसे इस जहान फानी से क्योंकि रुखसत हो गई, तो हम सालगिरह के मौके पर ये दुआ करते हैं तमाम उनकी आवाज के शहदाई कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफिरत फरमाए। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, खराज अकीदत आपका मलकए तरन्नुम नूरजहां की खिदमत में। शकील भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।

साहब बेइंतहा शुक्रिया आपकी आमद का, और बहुत दिनों के बाद इस कदर खूबसूरत गीत जो बहुत दिनों से शामिल प्रोग्राम नहीं हुआ था, आपके हवाले से ये लोगों के कानों तक रस घोल गया। और अब हम चलते हैं आपको लेकर ज़्यादा दूर नहीं, ओल्डहम, जहां हमारे बहुत खूबसूरत लिसनर मोहम्मद अयूब चौहान साहब ने ये खूबसूरत गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया। अयूब चौहान, खुश रहो, आबाद रहो, हमारी ढेरों दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जीते रहो। तोहफा हाजिर है, कबूल करो।

और दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको लेकर चलें लैया गुजरात पाकिस्तान, जहां पर नज़ीर अहमद साहब हमारी बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए सात समंदर पार से मौजूद हैं, आपका तोहफा इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद पेश करूंगा। और अब हम अपने उस खूबसूरत लिसनर को शामिल प्रोग्राम कर रहे हैं ब्रेटफोर्ड की ससीन वादी से, जिन्हें आप अजहर के नाम से जानते हैं। अजहर मियाँ, जीते रहिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिज्जोमान में रखे, हमारी ढेर और दुआएं साथ हैं, आपकी आमद हमारे प्रोग्राम के लिए बाई से मुसर्रत है।

ये बताता चलूं कि अजहर रियासत साहब जो हडर्सफील्ड से आते हैं, जिस तरह वो शहदाई हैं, दीवाने हैं खान साहब मेहंदी हसन खान साहब की आवाज़ के, अजहर का शुमार भी उन्हीं दीवानों में होता है, वो भी खान साहब की आवाज़ के शहदाई और मतवाले हैं।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैंने भी ये गीत सुना जो हमने अजहर मियां आपके लिए पेश किया था। बहुत ही पुरानी यादें अजहर साहब और इस गीत से हमारी वाबस्ता हैं, और बहुत अच्छा लगा सुन के, और बहुत अच्छा लगा आपकी आमद ने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। लेकिन अभी हम चल रहे हैं, इससे पहले कि हम हस्ब वादा आपको लेकर चलें लैया गुजरात पाकिस्तान, हम आपको लिए चल रहे हैं ये अपने बंदले। वहां मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे और खूबसूरत लिसनर और कॉलर, शकील भाई उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
12: वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। कैसे हैं आप शकील भाई?
3: शुक्र है, आप सुनाए कैसे हैं?
12: जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह ताला का कम है।
3: तो तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
12: वालेकुम अस्सलाम।
3: मैं खालिद सलीमी साहब है, नवीद भाई हैं, इस बार जिन किया भी है, अयूब भाई है, सूफी अब्दुल करीम साहब, चौधरी रुखसार साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब, तारिक जुल्फी साहब हैं, हाशमी हाउस वाले हमायों परवेज साहब हैं, मजीद भाई, अला शफिया नकवी साहब, शाह साहब, सबको मेरे अस्सलाम वालेकुम।
12: आपका मोहब्बत भरा सलाम आपके तमाम अहबाब तक पहुँचा।
3: ये शान हैदर बेबाक इनका नाम है, अमरोही।
12: शान हैदर बेबाक अमरोही। अता कीजिए।
3: वो कहते हैं, दिल में शर्मिंदा है ऐसा से खता रखते हैं।
12: मिसरा तो बहुत जानदार है, दिल में शर्मिंदा है।
3: दिल में शर्मिंदा है ऐसा से खता रखते हैं, हम गुनाहगार हैं पर खौफे खुदा रखते हैं।
12: वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह, क्या मतला है, वाह वाह वाह वाह, क्या कीजिए।
3: दिल में शर्मिंदा है ऐसा से खता रखते हैं, हम गुनाहगार हैं पर खौफे खुदा रखते हैं।
12: वाह वाह वाह वाह,
3: शुक्रिया। वो सितम पेशा कहाँ शर्मो हया रखते हैं,
12: वो सितम पेशा कहाँ शर्मो हया रखते हैं,
3: जो गरीबों पर हर एक जुल्म
12: रवा रखते हैं। वाह वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत,
3: शुक्रिया। वो सितम पेशा कहाँ शर्मो हया रखते हैं,
12: हाँ,
3: जो गरीबों पर हर एक जुल्म रवा रखते हैं।
12: वाह वाह वाह वाह,
3: जेब में कुछ भी नहीं दिल है अमीरों जैसा,
12: जेब में कुछ भी नहीं दिल है अमीरों जैसा,
3: हाथ खाली है मगर हुए अता रखते हैं।
12: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अता कीजिए, मतलब की तरह ये भी बड़ा जानदार शेर है।
3: जेब में कुछ भी नहीं दिल है अमीरों जैसा, हाथ खाली है मगर हुए अता रखते हैं।
12: भाई वाह वाह वाह, हुए अता रखते हैं, वाह वाह वाह वाह।
3: हमने माना के तही दस्त है पर सबके लिए,
12: क्या इतराफ है, वाह वाह वाह वाह।
3: दिल में गंजीना इखलास हो वफा रखते हैं।
12: क्या बात है, इसी की कमी है भाई, वाह वाह वाह वाह, अच्छा कीजिए शेर। हमने माना के
3: है तो शाम ढलती है तो नाकामियां करती है निढाल,
12: शाम ढलती है तो नाकामियां करती है निढाल,
3: सुबह होती है तो हम अज़्म नया रखते हैं।
12: आहा, सुबह होती है तो हम अज़्म नया रखते हैं, बहुत खूबसूरत ख्याल।
3: जी हजूरी किसी सूरत नहीं होती हमसे,
12: आहा, जी हजूरी किसी सूरत नहीं होती हमसे,
3: जी हजूरी किसी सूरत नहीं होती हमसे, बस इसी लिहाज से हम सबको खफा रखते हैं।
12: बिल्कुल, बगैर उसके काम नहीं चलता। वाह, ये शेर फिर अता कीजिए। जी हजूरी,
3: जी हजूरी किसी सूरत नहीं होती हमसे,
12: आहा,
3: बस इसी वास्ते हम सबको
12: खफा रखते हैं।
3: आखिरी शेर कहते हैं,
12: जी
3: क्यों करें फिक्र जमाने के चलन की बेबाक, क्यों करें फिक्र जमाने के चलन की बेबाक, हम तो हर हाल में जीने की अदा रखते हैं।
12: क्या बात है, क्या मख्ता है, अता कीजिए।
3: क्यों करें फिक्र जमाने के चलन की बेबाक, हम तो हर हाल में जीने की अदा रखते हैं।
12: क्या बात है शकील भाई, वो शेर अता कीजिए। जी हुजूरी हम नहीं होती, वाह वाह वाह, वो शेर अता कीजिए। जी हुजूरी नहीं,
3: कौन
12: सा? जी हुजूरी हमसे नहीं,
3: कुछ समझ नहीं आया। चलो कोई नहीं, एक और मैं सुना देता हूँ।
12: कोई बात नहीं, सुनाइए।
3: फतेहपुर का नाम है
12: जी। जी
3: वो कहते हैं, यही मियार अब दुनिया में सुबह शाम ठहरा है,
12: यही मियार अब इस दुनिया में सुबह शाम ठहरा है,
3: हवा के साथ चलना जिंदगी का
12: काम ठहरा है। भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
3: यही मियार अब दुनिया में सुबह शाम ठहरा है, हवा के साथ चलना जिंदगी का काम ठहरा है।
12: वाह वाह वाह वाह,
3: कहाँ तक साथ देगा हक परस्ती का कोई आखिर,
12: कहाँ तक साथ देगा हक परस्ती का कोई आखिर,
3: सदाकत पर हमेशा झूठ का इल्जाम ठहरा
12: ठहरा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह, क्या इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह।
3: बताएगा वही लज्जत सुरूरे तिश्न कामी की,
12: बताएगा वही लज्जत सुरूरे तिश्न कामी की,
3: लबे दरिया पहुँच कर जो भी तिश्ना काम ठहरा है,
12: आए है ये लबे दरिया पहुँच के जो भी तिश्ना काम ठहरा है, वाह वाह वाह, क्या तजवीहात है।
3: झांकने लगते हैं पलकों के दरीचे से,
12: आहा,
3: यही हर मुंतहाए रंज का अंजाम
12: अंजाम ठहरा है, वाह वाह वाह वाह।
3: गए वो दिन के कातिल काबिले तहजीर होता था,
12: आहा, गए वो दिन के जब कातिल काबिले ताजीर होता था,
3: गए वो दिन के कातिल काबिले ताजीर होता था, हमारे ऐद में अब कत्ल में पर इनाम ठहरा है।
12: आहा, क्या बात है, वो सच्ची बात है, वाह वाह, अता कीजिए। गए वो दिन,
3: गए वो दिन के कातिल काबिले ताजीर होता था,
12: ताजीर होता था,
3: हमारे याद में अब कत्ल पर इनाम ठहरा है।
12: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अनोखा ख्याल, हाँ और सच्ची बात।
3: हवाओं ने बुझाने की तो कोशिश की बहुत, लेकिन
12: हवाओं ने बुझाने की तो की कोशिश बहुत कोशिश,
3: चीले शहर पर रोशन चिरागे शाम
12: ठहरा है। भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
3: वजाहत चाहिए कुछ और आईने सियासत में,
12: वजाहत चाहिए कुछ और आईने सियासत में,
3: अभी है मौत सिर्फ इंसाफ में अब हम ठहरा है।
12: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, आता कीजिए, बहुत जानदार शेर है।
3: वजाहत चाहिए और वजाहत चाहिए कुछ और आईने सियासत में,
12: आईने सियासत में,
3: अभी है मौत सिर्फ इंसाफ में इबहाम ठहरा,
12: इबहाम ठहरा है, बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह वाह।
3: मैं अपनी बेगुनाही तो अभी साबित न कर पाया,
12: मैं अपनी बेगुनाही तो अभी साबित न कर पाया,
3: सितम इस पर तुम्हारा जुर्म मेरे
12: नाम ठहरा है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, आता कीजिए।
3: मैं अपनी बेगुनाही तो अभी साबित न कर पाया,
12: अल्लाह अकबर,
3: तुम उस पर तुम्हारा जुर्म मेरे
12: नाम ठहरा है।
3: आखिरी शेर करते हैं,
12: अता कीजिए।
3: अना के जोम से जब भी निकल कर बात की हमने,
12: अना के जोम से जब भी निकल कर बात की हमने,
3: हमारा मुद्दा सद्दीक फिर इल्हाम ठहरा है।
12: आहा, हमारा मुद्दा, क्या बात है, बहुत मुरस्सा इंतखाब।
3: अना के जोम से जब भी निकल कर बात की हमने, हमारा मुद्दा सद्दीक फिर
12: इल्हाम ठहरा है। वाह वाह वाह वाह,
3: शुक्रिया
12: शकील भाई, बे इंतहा शुक्रिया आपकी आमद का, और हमेशा की तरह बे इंतहा मुरस्सा कलाम था। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वाह वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया। शकील भाई हमेशा बे इंतहा मुरस्सा और मुंतखब कलाम लाते हैं और आपके कलाम को बहुत सराहा और पसंद किया है खारियां गुजरात पाकिस्तान में। परदेसी मजीद साहब ने इतनी वाह वाह लिखी कि अगर मैंने सारी आप तक पहुंचा दी तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, इसलिए चंद ही पर इक्तफा कीजिए। अल्लाह उन्हें सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। और अब दोस्तों हम हस्ब वादा आपको लिए चल रहे हैं लैया गुजरात पाकिस्तान, और इसके बाद भी बता दूं क्या करेंगे। हमारी बावची खाने की रानी जिन्होंने लस्सी में छीट बनाई है और चूजा यखनी पुलाव बनाया है, यार मैं आप सबसे कहता हूं कि ऐसी बातें ना किया कीजिए। और ये हमारी बिटिया जो है ये जरूर अपना जरूर बता देती कि आज बनाया क्या है, क्योंकि इन तीन घंटों में ये अपने घर का तमाम खाना वगैरह तैयार करती हैं। कहती हैं कि अंकल आपका प्रोग्राम सुनते हुए मैं बहुत इत्मीनान के साथ किचन के सारे काम निपटा देती हूँ। जीती रहो मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बावची खाने की रानी सुमेरा, और तुम्हारा तोहफा हम जरूर पेश करेंगे। हमने क्यों कर रखा है, लेकिन अभी नहीं, एक गीत के बाद, क्योंकि ये गीत हम नजर कर रहे हैं लैया गुजरात से आए हुए हमारे मेहमान नजीर अहमद साहब और उनके अहले खाना के नाम। गीत ये भी बहुत दिनों के बाद आप सुनेंगे, ये मुझे यकीन है, इसलिए कि मैं कोशिश करता हूं जरा वैरायटी रहे प्रोग्राम में। देखे आपकी राय क्या है, नजीर जीते रहो।

और दोस्तों अब हम आपको लिए चल रहे हैं बेडफोर्ड 18, जहां हमारी बहुत ही प्यारी सी बहना शहनाज मौजूद है और सिर्फ एक दुआ सुनने के लिए वो हमारे प्रोग्राम को पूरा सुनती हैं और कहती हैं कि मेरे सर पर कोई बुजुर्ग नहीं रहे, आपकी आवाज में आपकी जो बात है उसमें जो शफकत है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे बड़ी तस्कीन होती है जब भी आपकी आवाज सुनती हूँ तो लगता है कि मेरा कोई बुजुर्ग मेरे सर पर मौजूद है। जीती रहो। और वो दुआ जिसकी तुम मुंतजर रहती हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, सेहत से रखे और बच्चों की बहारें दिखाए। तोहफा हाजिर है, कबूल करो और बचपन की हसीन यादों में गुम हो जाओ।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: और दोस्तों, चल रहे हैं अगले गीत की जानिब, जिसे हम कर रहे हैं अपने दो उन खूबसूरत लिसनर्स के नाम और नाजरीन के नाम जो तशरीफ लाए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ से तशरीफ लाए हैं। अमीन खरल और वकार, हाँ ये दो नाम ऐसे हैं जो हमारी बद में तो शामिल हैं लेकिन बताया नहीं, वकार मियाँ और अमीन खरल साहब, आपके लिए हमने ये गीत मुंतखब किया है। आपकी मोहब्बत और चाहतों और प्यार का बहुत शुक्रिया। जब इस कदर प्यार से आप तशरीफ़ लाते हैं तो हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आप अहबाब कहाँ से तशरीफ़ लाएँ। हमें बेइंतहा खुशी होती है जब आप लोग तशरीफ़ लाते हैं। अमीन खरल और वकार अहमद, आपकी मोहब्बतों के नाम।

और दोस्तों हमारे दो मेहमान जो आगाज प्रोग्राम में तशरीफ ले आए थे किसी जरूरी काम से घर से निकले थे, भगत सिंह साहब का कहना है कि रोड वर्क में मैं फंस गया था, हालांकि मैंने पूरा प्रोग्राम आपका सुना है लेकिन अपना तोहफा मैं घर पर आकर ही वसूल करता हूँ। हम आपका तोहफा आपकी नजर करेंगे। यही अहवाल हुस्न इत्तेफाक है। रियासत साहब भी अभी अभी अहले खाना के हमरा तशरीफ लाए हैं, वॉकजल वो गए थे और वापसी में गाड़ी में प्रोग्राम सुनते हुए आ रहे थे वो, और कहते हैं कि अब हम घर पहुंच चुके हैं। अगर हमारा तोहफा, आपने उस वक्त फोन किया था आगाज प्रोग्राम में, ये नहीं बताया था कि आप महव सफर हैं, वरना हम आपको सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर देते मियाँ। एनी हाउ अब आप हमारी बज़ में आ गए, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और पहले हम चल रहे हैं उस तोहफे की जानिब जो हम पेश करना चाह रहे हैं हमारे मोहतरम और बहुत ही खूबसूरत लिसनर जनाब शहरयार साहब, जो काफ़ी देर से हमारी बज में मौजूद हैं और लुत्फानंदोज हो रहे हैं अपने अहले खाना के हमरा। आपको, आपके अहले खाना को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। नॉर्थ हॉल लंदन चलते हैं और इनका तोहफा, शहरयार भाई आपका तोहफा हाजिर है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन गज़ल ऐसी शानदार है कि दिल खुश हो जाएगा। मेरी कंधे पे रख के बंदूक चढ़ाई थी ना आपने, हमने भी ऐसी गज़ल मुंतखब। और इस गज़ल की खूबी ये है कि ये गज़ल मलका तरमीम नूरजहाँ ने इसकी मौसीकी खुद तरतीब दी थी। गज़ल सुन देखिए, फिर बाद में बात होगी। आपकी मोहब्बतों के नाम शहरयार भाई और अहले खाना की नज़र, सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे।

आखिर से गीत सुन रहे, देर आया दुरुस्त आया, अब भी वक्त था कि हमने आपकी ख्वाहिश को पूरा किया, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपका मोहब्बत भरा सलाम तमाम सुनने वालों तक पहुंचा दिया है, तोहफा हाजिर है।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम, लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
10: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफुट, BD8 8AX, फोन ब्रेडफुट 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दें।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पुर असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM, and online.
14: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूर असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
12: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
11: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
12: मेनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
14: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: ये पर्दा

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस 106
7: लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627222, 9627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर हूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274
12: Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: दुरूद पढ़ती हुई बाखबर गई खुशबू, दुरूद पढ़ती हुई बाखबर गई खुशबू, नजर जो आया मदीना उतर गई खुशबू, ख्याल था कि न जाने कहां से आए हुजूर, राहे हबीबे खुदा में बिखर गई।

बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूँ के इश्क़े रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.